FM 102.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

राकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन

0: कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और

हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय

यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान

0: समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

6:10 मिनट पर आप सुनेंगे चिंतन। 6:15 समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बाहर आप सुन पाएंगे 6:45 पर। 7:20 समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। कलाकार होंगे अनुराधा पोडवाल। 7:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

आठ बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। इन बुलेटिन का रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर आप सुन पाएंगे समूह सुरों में देशगान। पर आप सुनेंगे साहित्य सुगंध में राजस्थानी कहानी। कहानीकार होंगे श्री भगवान सेनी। 9:30 पर आप सुन पाएंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल विहार। 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। 11 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मन की बात। इसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार आप सुन पाएंगे 12 बजे। माटी के स्वर कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलाकार नथुराम हटवाल और पार्टी की गाई हुई लोक रचनाएं। समय रहेगा 12:30। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। महिलाएं सुन पाएंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। समय रहेगा 1:05। 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज और उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ ही हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर सुनेंगे देशगान। 6:20 समय रहेगा संस्कृत में समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। 6:30 पर आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक

समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। इनका रिले आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा। खेती और गृहस्थी, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9। इनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9:30 समय रहेगा दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम अनुगूंज का। 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से ही अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।

मनुष्य का जीवन एक कोरे कागज की तरह है। इस कागज पर ज्ञान की स्याही से जो रंग भरे जाते हैं वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और इस रंग को भरने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा। शिक्षा केवल किताबों को पढ़ लेना नहीं है, यह केवल कोई डिग्री हासिल करना या आजीविका कमाना भी नहीं है। शिक्षा तो आत्मबोध का मार्ग है, यह हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर चेतना का दीपक

आज के इस आधुनिक दौर में हम अक्सर शिक्षा का मूल्यांकन केवल अंकों, श्रेणियों और प्रतियोगिताओं से करने लगे हैं, पर क्या यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? जरा चिंतन कीजिए। वास्तविक शिक्षा वही है जो हमें एक संवेदनशील इंसान बनाए, जो हमारे भीतर करुणा, दया और विवेक को जागृत करे। शिक्षा हमें भीड़ चाल से अलग हटकर सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो। शिक्षा केवल एक व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलती, यह पूरे समाज को कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव के बंधनों से मुक्त करती है। जब साथियों एक बच्चा शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां जागरूक होती हैं।

साथियों, आज हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो नवीन तकनीक और विज्ञान को तो अपनाए लेकिन नागरिक बनाते हैं। तो साथियों, आज चिंतन की इस घड़ी में एक संकल्प है, हम शिक्षा को केवल एक व्यवसाय या मजबूरी न बनने दें। हम अपने बच्चों को रटने की मशीन बनाने की बजाय सोचने और समझना

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे सालासर बालाजी का प्यारा सा भजन। रविंद्र जैन और साथियों की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं राम भजन।

जगजीत सिंह और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ों में आप सुन रही थी वारिस फिल्म का गीत। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा और उत्तम जगदीश ने संगीत दिया। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है गंगा तेरे देश में। इस फिल्म का प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ें अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज की है। आनंद बख्शी की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है श्रोताओं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

मुद्दत फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की है। इंदीवर ने इस गीत को लिखा है और बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया है।

यही वादा रहा। इस फिल्म का प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की है। गुलशन बावरा ने शब्द लिखे हैं और आर डी बर्मन ने संगीत दिया है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम हिमालय की गोद में। इंदीवर की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में ये प्यारा सा की फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। एसएच बिहारी की शब्द रचना और ओपी नैयर का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। कलाकार हैं अनुराधा पोड़वाल, संगीत है सतीश भाटिया का और कड़ी है 392।

अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार अनुराधा पोडवाल और संगीत सतीश भाटिया का था, कड़ी थी 392। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

नमस्कार, आदाब और सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हम सफर आरजे चंद्र प्रकाश बेदी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार चूरू, सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी चूरू पर।

दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में हर चीज बहुत सोच समझकर चुनते हैं। नए कपड़े लेने हो, नया फोन लेना हो या नया घर, हम 10 बार सोचते हैं। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से यानी लोगों का चुनाव सोच समझकर करते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। सही लोग आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं और गलत लोग आपका हौसला तोड़ देते हैं। इसलिए जिंदगी में सही लोगों का होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। चलिए इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं आज का ये पहला बेहद प्यारा सा गीत जो दोस्ती के सच्चे रंगों को बयां करता है।

वेलकम बैक दोस्तों। अक्सर हम चमक दमक देखकर लोगों के करीब चले आते हैं, लेकिन इंसान की परख उसके वक्त बदलने पे होती है। जी हाँ साथियों, जो आपकी तरक्की से चले, जो आपकी पीठ पीछे शिकवे करे, उससे दूर हो ही जाना खुद पर उपकार करने जैसा है। अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हें जगह दीजिए जो आपकी खामोशी को भी पढ़ सके।

बस साथियों इतना कि चेहरे पर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर हाथ मिलाने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता। लोगों को परखने में वक्त लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जो लोग आपकी खामोशी को समझ सके, जो आपकी कामयाबी पर ताली बजा सके, बस उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी

0: सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।

0: हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक साथियों, मैं आज आपके साथ चंद्र प्रकाश बेदी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। श्रोताओं, आज है 31 मई। कैलेंडर का वो एक ऐसा पन्ना जो हमसे एक बहुत ही संजीदा सवाल पूछता है कि क्या हम वाकई अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बात उन वादों की जो हम अक्सर खुद से तोड़ देते हैं। तंबाकू का वो एक छोटा सा टुकड़ा या सिगरेट का वो धुआं आपकी जिंदगी के खूबसूरत पलों को धीरे धीरे धुंधला कर रहा है। साथियों, जिंदगी बहुत अनमोल है दोस्तों, इसे किसी लत की भेंट मत चढ़ाइए। चलिए इस गंभीर सोच के साथ सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये बेहद खूबसूरत और जिंदगी की हकीकत बयां करती गजल।

साथियों, हम बात कर रहे हैं तंबाकू से आज़ादी की। बहुत से लोग कहते हैं कि लत लग चुकी है, अब छूटती नहीं। लेकिन सच मानिए, इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। जब आप एक सिगरेट जलाते हैं या गुटखा खाते हैं, तो सिर्फ आप प्रभावित नहीं होते, बल्कि आपकी बूढ़ी माँ, आपकी जीवन संगिनी और आपके मासूम बच्चे भी उस दर्द को झेलते हैं।

दोस्तों बस इतना सा ही ध्यान रखें कि तंबाकू छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि हर दिन लिया जाने वाला एक सही फैसला है। अगर आज 31 मई को आपने पहला कदम उठा लिया तो आने

0: प्रगणा 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में।
2: इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चोरू। दोस्तों सुबह सुबह जब हम खिड़की खोलते हैं तो ठंडी हवा का झोंका मन को छू जाता है, पर जरा सोचिए अगर उसी खिड़की से बाहर झांकते ही सामने कचरे का ढेर दिखे तो पूरी सुबह का मूड खराब हो जाता है ना। हम अपना घर तो चमका लेते हैं पर घर के बाहर की सफाई का क्या। इसी सोच को बदलने के लिए आज पूरा देश एक साथ मिलकर मना रहा है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। यानी आप सोच रहे होंगे कि यार ये मिशन 2.0 क्या है, पहले वाला क्या कम था। तो साथियों बता दें कि पहले चरण में तो हमने हर घर में शौचालय बनाए, खुले में शौच से मुक्ति पाई, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन

से भी बड़ा है। इसका सीधा नारा है गार्बेज फ्री इंडिया, यानी पूरी तरह से कचरा मुक्त भारत। इसका मतलब साथियों ये है कि हमें सिर्फ सफाई नहीं करनी बल्कि जो कचरा पैदा हो रहा है उसका सही निपटारा करना है, और इसकी शुरुआत सरकार नहीं हमारे और आपके घर के डस्टबिन से होगी। कैसे होगी? चलिए आज आपको एक छोटी सी जादुई ट्रिक बताता हूँ। बस दो बातें याद रखनी हैं आपको, गीला कचरा और सूखा कचरा। अक्सर हम सब कुछ एक ही डिब्बे में ठूंस देते हैं, लेकिन आज से नियम बदलिए। चाय की पत्ती और सब्जी के छिलके और बचा हुआ खाना जाएगा हरे डिब्बे में यानी ग्रीन में, और प्लास्टिक कागज कांच या गत्ते जाएंगे नीले डिब्बे में। अगर आपने सिर्फ इतना सा काम कर दिया ना, तो समझो आपने देश सेवा में अपना बहुत बड़ा योगदान दे दिया। और हाँ, एक जरूरी बात, बाजार जाते समय जेब में वो सिंगल यूज प्लास्टिक की थैली ढूंढना बंद कीजिए। अपनी गाड़ी की डिक्की या बैग में एक कपड़े का थैला हमेशा तैयार रखिए। जब आप शान से कपड़े का थैला लेकर चलेंगे तो देखेंगे क्या देखने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी। आखिरकार वही है हीरो जो बदलाव की शुरुआत करता है।

साथियों, स्वच्छता कोई मजबूरी या सरकारी नियम नहीं है। दोस्तों, यह तो हमारी और आपकी सेहत से जुड़ी एक अच्छी आदत है। जैसे रोज सुबह उठकर चेहरा धोना जरूरी है ना, वैसे ही अपने आसपास को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारा मोहल्ला साफ होगा तभी तो हमारा देश नंबर वन बनेगा। तो चलिए इसी शानदार और सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज का रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: लक्स सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर

0: से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई है जो इन्होंने शेयर की है ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब

0: की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर आरसीबी का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू।

श्रोताओं नमस्कार, आप निरंतर सुन रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में से उद्धृत अंश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे पूज्य बापू के जीवन में खादी का जन्म किस प्रकार हुआ। अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में हमारे राष्ट्रपिता लिखते हैं,

मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने हिंद स्वराज में यह माना था कि चरखा

उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार को जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम में कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनाई सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, परंतु मगनलाल शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली थी और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हो चुके थे। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद कर दिया था और यह निश्चय किया था कि वे हाथ करघे पर देसी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन ब दिन कर्जदार होते जाते थे, इन सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें, ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देशी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें सूत काटती नहीं थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती हैं। बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे, जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना।

यों तो हम काटने वाले मिलों के अवैतनिक एजेंट बने, मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काटकर खुद ही बुनना था। वे हाथ करघे की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करते थे। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर देश सेवा कर रहे हों ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन ना तो कहीं चरखा मिलता था और न ही कहीं चरखा चलाने वाले मिलते थे। एक बार एक वकील साहब एक वकील की बहन जी को खोज कर लाए। उन्होंने कहा, यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा गया जो इस विषय में कुछ बता सकता था। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ोत शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। वहां एक महासाहसी बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक न थी पर उनमें हिम्मत और समझदारी असाधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे कहीं अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क अंत्यजों से मिलती थी और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर कसा हुआ था और चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकी थी उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया था। श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में खादी का जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार उन्होंने चरखा प्राप्त करने की जद्दोजहद

अभी श्रोता सुन रहे थे गांधी चर्चा। वाचन स्वर मनीष भारद्वाज के थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए संवेद सौरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह सुरमी देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पेश है न्यूज डेस्क से मन की बात कार्यक्रम पर डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
1: साल 2014 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसमें प्रधानमंत्री सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, साथ ही आम नागरिकों की उपलब्धियों और प्रेरक कहानियों को भी सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। श्री सिंह ने बताया कि नौसेना को दुश्मन पर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी और ताकत के साथ अरब सागर में तैनात किया गया था।
2: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख हो

0: ही कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: फुलेरा के पास हिरनोदा गांव में थार ड्राईपोर्ट बनाया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल इसका उद्घाटन किया। ये हस्ती पेट्रोकेमिकल और शिपिंग लिमिटेड HPCSL की इकाई है। इससे सड़क और रेल मार्ग के जरिए कंटेनर आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 92,000 से ज्यादा जल स्रोतों और 42,000 से अधिक सरकारी भवनों की सफाई की गई। 52,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। वहीं हरियाणा राजस्थान में पौधरोपण के लिए 36,000 से ज्यादा पिट खोदे गए। साथ ही करीब 32,000 कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान के तहत आज प्रभात फेरी, रैली, श्रमदान, बावड़ियों की साफ सफाई करने के साथ ही नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। वहीं कल खेती संबंधी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। इससे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समूचे वातावरण में धूल का गुबार छा गया। पीली काली आंधी से दिन के समय ही अंधेरा हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधड़ से कई जगह घरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लगे टीन शेड और सोलर पैनल उड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं खरीद केंद्रों पर रखी गेहूं की बोरियां भीग गई। उधर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू और बारा में अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। जयपुर जिले में ग्रामीण इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरे। बरसात से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों में आंधी बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की आत्मा साहित्यकारों में बसती है। साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है, बल्कि संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। श्री बिरला कल कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लेखकों से प्राचीन साहित्य कृतियों के डिजिटलीकरण करने का आग्रह किया, जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके।
2: भारत के साहित्यकार, कवि, लेखकों ने अलग अलग कालखंड के अंदर भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया, देश में रचनात्मक दिशा दी, रचनात्मक दृष्टिकोण दिया और रचनात्मक विचार दिया। आने वाली पीढ़ियों को भारत के साहित्यकार, गीतकार, लेखकों से जो उनके ज्ञान के भंडार हैं, उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाकर देश और राष्ट्र की प्रगति और देश राष्ट्र की सेवा में लगे रखें।
1: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 मई से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। 23 मई तक चलाए गए इस अभियान में 2,000 से ज्यादा चालान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध संबंधी परामर्श सत्र रखे गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने लोगों से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है।

आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी टक्कर होगी। ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देश गान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम साहित्य सुगंध में राजस्थानी कहानी। कहानीकार हैं श्री भगवान सेनी।
1: कई दिन से इन गली में आवने रो काम ही कोनी पड़ो। यहाँ गांव घणो बड़ो नहीं है, कठे होणी बदलाव रो ठा नहीं पड़े। अपने अठे रहता दोरिया ही उन्हें माई नितरी चालती आंदिया माई रंगत बदले, पर सियाले री

देसरा गांव से मोह ममता माई कमी होनी शुरू हो गई। उनारा टबर अबे गांव माई अवे तो किनी मुझसे नहीं खाली मायता रो मन और मान राखने सारू के उनारा बारह दिन पूरा करने सारू बाकी इन बिंजारी दुनिया माई किन कना फालतू रो भगत है कहता ही करने सारू गांव माई अवे सुनने पंथ

ब्रह्म सिंह गया यहाँ कहीं प्रीत तोड़ सा जाओ राम राम सेठा इसी बात तो नहीं है मारो ध्यान ही अड़को कोई बात नहीं है तो आओ पाटे मा थे अब तो तने बैठना ही पड़सी येरजी बरोबरियाँ खातर चिलो मोको टाबरा खातर फांकिया मखाना राखता मारे जैसा बिचोटिया नहीं है पकड़ बैठा हूँ था जे कोई घणो तुड़ाव कर तो बे माँ सा सारू है लोकर देव था और सारे हमेशा आध घड़ी उन्हें कन्ने बदित करनी पड़ती और इन बात येरजी रो पाटो आखे दिन मिन

रिकड़ा से हमें रिकड़ा रखन शुरू किया मैं जानू थे पुग्योड़ा मैं आग लगर छू फटी हो रही हूँ वीर जी बड़े तीन कांकरी उठाई और मनी मन की बुदबुदायर फूंक मार पुंगी का नी उछाड़ दी काल बेलियो पुंगी माई फूंक भरी और पैरवा माथे आंगड़ियाँ फिराई पुंगी तो एकदम ठीक ही और सूरी सांतरा लागा काल बेलियो जुआर कर टूट गयो।

बैठे थने कोई नहीं जाने, थे कुश्ती हार छो तो कोई फर्क नहीं पड़ेला, पर मैं हारियो तो मारो मरनो हो जासी, और मैं जी छू तो मारो रुतबो आखे चोखड़े माए चोगणो हो जासी। कुश्ती रा पैसा तो थाने मिलना ही है, मारी माटी पलीत क्यों करो। अर इन मंत्र रोई श्यो से रोयो कि हरियाणा रो पहलवान चारू खाना चिताओ भी यही हीरजी रा मंत्र होवेला। जठे तक बात हीरजी रा आसाम रे कारोबार रही है तो बठे आज हीरजी रे नाम रा पत्थर तिरे, पण गद्दी माथे कब्जो टाबरा रोक जो। अरे हीरजी बिन जबो पार शू अड़गा, उम्र भर खाट नहीं करनी हो, मिनुख निकमो हो घर बैठ जावे तो केड़ो लागे। आ कोई हीरजी शू पूछो, कई दिना तो बह बठे इन झाक माए रे आके टाबरा शू कारोबार ढंग शू संभले के नहीं, पण जब नीचो हो गयो क्या बैठा अपनों की काम को नहीं तो ओल्यूं री जमीन री ओल्यूं उन्हां ने गाँव ले आई। अठे उन्हां रा सारू कई काम इली और बप्पो तेरी सामठी देखभाल, और बाल गोठियां सच थे बंतड़ बगतरों की ठाई नहीं पड़े कि कद दिन उगे और कद आथ ने। सुबह रा मुस्करा हीरजी सेंग गाँव वाला रा मुँह जाग्योड़ा, उन्हां री बात रो कोई बुरो नहीं माने, और सेंग सन्मान से देखे अब तो उन्हां रो पेट घणो भारी हो गयो, जिन से उन्होंने चालने फिरना माई तकलीफ होवे, और आप रे पाटे मत ही बैठिया रहे। पर जद आसाम से आया तो इतना भारी नहीं आ, बाजार जाए दो मिनट साग सब्जी और बीजे जिनसा खुद खरीद ले आऊँ था। उन्होंने मन में ही कि हाड़ी नौकर सा

सेठ से टूना टोटका की बात हाजरी रखाना मा ही पुग्योड़ी मुड़ सोचो कि कहीं था सेठ की उपाशियों सुन लगे हो थरे छोरे की मुंछा दिखे ये जीरा बोलना सा थी हाजरी री नजर फाटोड़े।

अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुगंध में राजस्थानी कहानी। कहानीकार थे श्री भगवान सैनी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल विहार।

सादा नमस्कार। बच्चों, हमें पता है कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां जो है वो चल रही है और पढ़ाई से आपने थोड़ी सी निजात पाई है, लेकिन पढ़ाई को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि हमें पता है आपको होमवर्क मिला है और होमवर्क

लेकिन कर लेंगे में छुट्टियां जो है वो आपकी यूं ही व्यतीत हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टियां यूं ही आपकी चली जाए और आपका जो स्कूल का होमवर्क है वो आपका ज्यों का त्यों पड़ा रहे। नहीं बच्चों, आपको खेल के अलावा, अपने घूमने फिरने के अलावा अपना होमवर्क भी करना है। लेकिन पता है, आप अगर अपना टाइम टेबल बनाकर चलते हैं तो आप अपने सारे काम बहुत जल्दी निपटा पाते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना एक शेड्यूल फिक्स करें। अगर आप लेट तक सोते हैं ना बच्चों, तो लेट तक ना सोइए। ठीक है, आपकी छुट्टियां हो गई है, आप 4-5 दिन भरपूर आराम कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको कितने समय उठना है, कितने समय सोना है, कितने टाइम पढ़ाई करनी है और कितने टाइम अपने गेम्स में आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। पता है बच्चों, दुनिया उसे याद रखती है जो विजेता होता है और हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, ये बात हम जानते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपको चमकना है, आगे बढ़ना है, तो आपका तन और मन दोनों ही आपको स्वस्थ रखना होगा। और तन और मन दोनों ही अगर आपका स्वस्थ रहता है, अगर आप फिट रहते हैं, तो आप फिर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यानी कि कितना भी बड़ा काम आपके सामने आ जाए, हमें पता है आप उसे जल्दी से निपटा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, आपको एक शेड्यूल आपका बनाना होगा। आप जॉगिंग, रनिंग, व्यायाम करना सीखिए। और पता है, शुरुआत में ये सब चीजें हमें बहुत कठिन लगती है, लेकिन आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और धीरे धीरे अगर आप ये काम शुरू करते हैं, तो पता है बच्चों, आपकी जो क्षमता है, आपका जो काम करने की जो गति है ना, वो और भी तेज होती चली जाएगी। और ये जो आप खेल, आउटडोर गेम्स जो आप खेलते हैं ना, इससे बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपकी सहन शक्ति का विकास होता है, और हम यूँ कह सकते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास जो होता है इस खेल और कूद से होता है। और इसका लाभ एक ये भी है कि भविष्य के लिए आप और ज़्यादा मजबूत

आपके जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण मूल्य, जैसे कि मेहनत करना, ईमानदारी और सकारात्मक

nessuna.

लिहाज में गिर गया। चीकू बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अगर मैं इस फल को अपने घर पर ले आऊं तो मेरे सभी दोस्त और परिवार वाले कई दिनों तक इसको खा पाएंगे।

घोंसला किया और उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन पता है फल बड़ा था, भारी था, तो जो चीकू थी वो थी बहुत छोटी, तो वो उस फल को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाई। लेकिन चीकू ने हिम्मत नहीं हारी, उसने फल को दूसरी तरफ से धक्का लगाया, यानी कि हजारों कोशिशें उसने की लेकिन वह फिर भी नहीं हिला। उसी पेड़ की एक शाखा पर, एक डाली पर एक गिलहरी थी, वो नीचे कूदी और चीकू का मजाक उड़ाने लगी। गिलहरी ने कहा, अरे नन्ही चींटी, तुम इतनी छोटी सी हो और ये फल इतना बड़ा है, तुम इसे कभी नहीं ले जा पाओगी, इतना समय बर्बाद करना बंद करो, ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पता है बच्चों, चीकू ने बुरा नहीं माना, चीकू ने गिलहरी की बात का कोई भी बुरा नहीं माना, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ,

यह कहकर चीकू ने फिर से पूरी ताकत लगाकर फल को खींचना शुरू किया। बच्चों, उसका आत्मविश्वास जो था ना, वो बहुत बड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि वो इस फल को घर तक ले जाएगी। तो उसने ताकत लगाई और वो थोड़ा सा आगे

उसने एक तरकीब सोची। उसने फल को घसीटना बंद किया और उसे दीवार के ऊपर से ढलान की तरफ थोड़ा सा खिसकाया। गुरुत्वाकर्षण

कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम असंभव नहीं होता, अगर हम छोटी छोटी कोशिशें करते हैं तो।

पता है, अगर मौसम अनुकूल हो जाता है तो ये वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं जहाँ से ये गए थे। बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मतलब सर्दियों में

रन ये सबसे लंबी दूरी की यात्रा करता है। कॉमन कुकू है, ग्रे हिरन है, ये बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। पता है

और धीरे धीरे ये अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जो पक्षी होते हैं, बच्चों जिनके बारे में हम

बात करें कि कौन सा पक्षी जो है वो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करता है, तो वो हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा राजस्थान में जो पक्षी आप देखते हैं कि कौवा है और कोयल है ना,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल विहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का रिले किया जाएगा।

0: एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरा होगा लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही हैं

सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार

0: आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे कहा अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली तुम जैसी हो वैसे ही रहना। हाँ, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस

0: लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया, तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ,
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
0: हाँ,
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
1: जी,
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: है
0: ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद आवाज।
0: हाँ, बुलंद आवाज थी।
1: तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो

साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, और मैं शायद

0: ने बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद
1: हाँ,
0: किए हो।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा।
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ। तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो। तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया। तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्यकी हैं उस जोगीरा में। हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी।
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ।

0: एकदम,
1: जी
0: और घूम के आना था,
1: जी
0: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
1: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
0: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
1: लाठी के भूत,
0: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
1: बद्री जी को धन्यवाद थी, उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया।
0: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी,
1: हाँ,
0: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
1: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
0: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बन जाती किसी भी चीज में। वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
1: अच्छा,
0: हाँ ये है, ये फ्रेम है। ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
1: अच्छा,
0: तो 2-3 चीजें ये सीखे कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
1: हाँ।
0: ऐसे चल फ्रेम की बाहर ही चली जाती है। तो वो नेचुरली था, अंदर तो आ गया
1: जी।
0: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में। आप उन

वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके।

0: मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है।
0: हाँ।
1: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ। एक
0: तो
1: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं।

0: कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता. नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी.
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है.
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है.
0: तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ. ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ.
1: हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं. तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं. तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए.
0: अच्छा ऐसा
1: जी. तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं. तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं.
1: उसका संगीत कितना
0: खूबसूरत और बहुत मीठा संगीत है.
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा.

झारखंड में ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई

0: बड़ा गंदा सा पैच था, उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वाज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
1: जी जी,
0: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था, और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
1: जी,
0: तो इसलिए मैंने कभी उन पे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
1: जी।
0: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
1: नई
0: प्रोडक्शन में
1: जी,
0: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है। बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
1: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
0: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
1: अच्छा।
0: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
1: जी।
0: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
1: आदत अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
0: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
1: जी।
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे। हाँ।
1: नहीं वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
1: जी,
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी
1: जी,
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
1: जी,
0: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
1: नीचे का जी।
0: लेकिन वो ले गए
1: जी,
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती।

0: विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही तो सेम फिल्म,
0: हाँ सेम फिल्म, लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म से। तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
1: हाँ जी जी उसके बाद ही,
0: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं, मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब, और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: बहुत
0: देखे
1: अच्छी।
0: हाँ। तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी,
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा,
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, अब मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिल के काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर,
0: हाँ
1: पारिवारिक तरीके से काम।
0: हाँ, फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत,
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा,
0: मेरे पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं राजकुमार आ गए वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी, तो ये बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए, तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली,
0: शादी कर ली, बताइए आप। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर, और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी थी।
0: होता है ना दिमाग में शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी।

0: लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत।

0: संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो, जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से, गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
1: अच्छा।
0: तो उसमें मैंने काम किया
1: जी,
0: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो।
1: इतना लाइटली तो नहीं लिया होगा।
0: बहुत अच्छी फिल्म बनी।

0: भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती है। ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा।
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते पीते
1: हाँ। क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या।
0: अच्छा।
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, मुंजा को।

0: जा रहे, चंदन चंदन। तो
1: हाँ
0: एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: इसके? रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ,
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी।
1: होगा।
0: हाँ,
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
0: बहुत
1: समय?
0: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी, बहुत
0: ये,
1: खूबसूरत गीत
0: हाँ,
1: है।
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं।

0: हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: हाँ, बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था।
0: हाँ।
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, माय गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया, तो
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए, जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोग ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी।
1: दादू,
0: और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा,
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है, तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई।
0: हाँ,
1: अल्लड़पन कहते ना,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई।
1: ये बात है, मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं, और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
1: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला कि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी।
0: हाँ।
1: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था, नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। हाँ। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: तो, यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
0: जी,
1: तो जहाँ भी है बस खुश रहे
0: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे, हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार

0: तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय की जगत में है
1: नहीं
0: या?
1: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
0: अच्छा
1: उसको फेमस नहीं होना है, वो बिल्कुल ही अलग सोचता है।
0: जी
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
0: जी
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
0: जी
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ उस
1: तो
0: समय वो चल
1: फिर
0: नहीं
1: वो
0: पाई।
1: उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब
1: तो
0: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
1: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
0: मेहनत
1: जब
0: करो अपनी,
1: हाँ अपनी मेहनत करो,
0: ये बहुत अच्छी बात है, उनको
1: क्योंकि मैंने
0: अपना
1: अपने लिए
0: सही
1: कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
0: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,
0: जी
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%, अब देखते हैं क्या होता
0: जी बिल्कुल होगा,
1: है
0: आपने कह दिया, सोच लिया, और
1: हाँ
0: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
1: हाँ ऐसा
0: हम मान
1: है,
0: के चलते हैं।
1: चलिए
0: बिल्कुल, ये
1: ठीक
0: जगह
1: है।
0: बड़ी
1: हाँ
0: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
1: हाँ
0: आए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर
1: हाँ
0: अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ
1: हाँ
0: रहे थे तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
1: अच्छी
0: यहाँ
1: लगी
0: की।
1: है।
0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं हैं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो कि क्या
0: तो
1: उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं,
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता
1: ख्याल
0: है।
1: होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी
1: बचता भी
0: नहीं
1: नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी, वो कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें, 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने पहनने से मुझे याद आया मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ एक कच्चे धागे करके, और
0: अच्छा
1: साड़ियाँ वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें, औरतों का काम है ये,
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए अपने आप को भी बनाए, और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा, उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की, बहुत
0: अच्छा
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है
0: अरे वाह
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी ये पहेली।
0: जरूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी, सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया।
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए। साधना जी अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:55 होने को है। आइए अब चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप और हम सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम मन की बात।

0: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे-छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े-बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है बुद्धि तो एक तलवार के समान है जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है
1: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन
2: कोई बोले राम राम
1: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप डीटीएच और यूट्यूब पर भी उपलब्ध आराधना

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बुलबुल के थक गया,
5: क्या हुआ?
4: नया किड बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले, आ गया नया किड बैग।
6: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई,
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
11: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।
11: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका, मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
6: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
11: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
12: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
11: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
12: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
11: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
12: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था।

0: बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे। बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं। एंड हम और करेंगे सर अभी, एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था, अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा।

और लगातार किया गया प्रयास, इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप

यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे,

जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास

0: उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: भक्तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु, शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम मन की बात। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुरबहार।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम सुरबहार। कार्यक्रम में आज आपने सुनी थी पंकज उदास की आवाज को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नथुराम हटवाल और साथियों को।

0: को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में।

नथुराम हटवाल और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम था माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने को है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के इस मौसम में अपना ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सरकारी विभागों ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसे नहीं भूलें।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आम की विभिन्न किस्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों के आते ही आम हर घर में चर्चा का विषय होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के परंपरागत पेय पदार्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना झलकती है। राजस्थान में छाछ हर खाने की साथी होती है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में देश की उपलब्धि से की। उन्होंने 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूरकी से भी बातचीत की। अपनी हाल ही की नीदरलैंड यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां आयोजित एक समारोह में चोला काल की ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। केरलम में चलने वाले स्विमिंग क्लब के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमें बड़ी सीख देता है कि सेवा करने के लिए अच्छा इरादा और लगातार प्रयास जरूरी है।
2: साजी बला सेविक जी का जीवन हमें बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर युवाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान कल से शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक महीने के इस राष्ट्रीय अभियान

0: में खेतों, किसानों और गांवों को जन जागरूकता से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि ये अभियान उर्वरकों के प्रयोग और मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी और गांवों को सीधे योजनाओं का लाभ दिए जाने पर केंद्रित होगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई है। उदयपुर जिले में 2 स्थानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर 18,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि ये मिलावटी घी टैंकों और विभिन्न कंटेनरों में पाया गया। कार्रवाई के दौरान फूड कलर की बोतलें भी बरामद की गई। टीम ने सवीना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से मिलावटी घी और अन्य दुग्ध उत्पादों का करीब 42,000 किलो से अधिक का स्टॉक भी पकड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज, वहीं 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट बताया है। मौसम का ये बदलाव 3 जून तक बना रह सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज आंधी चली। इससे दिन में ही रात सा अंधेरा छा गया। कई जगह आसमान धूल के गुबार से ढक गया जिससे कुछ मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी कल शाम आंधी चली, वहीं जोबनेर इलाके में झमाझम बरसात के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश से तापमान में 9 से 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

महिला श्रोताओं का खास प्रोग्राम कार्यक्रम महिला जगत लेकर हम हाजिर हैं और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ हूँ आपकी सखी संजू सोढ़ा। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, हम सभी को पता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमने अपना आधा जीवन यूं ही खराब कर दिया। हमारी काया का, हमारे स्वास्थ्य का अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया, ये हमने सभी ने सुना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हाथों जो है अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, कुछ हमारी गंदी आदतों की वजह से। और वो आदतें होती है हमारी धूम्रपान करने की, नशा करने की। इस तरह की आदतें जो होती हैं, जब हम पाल लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो अपने आप ही खराब होने लगता है। बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि हम जो है इन आदतों को छोड़ दें। हमारे पारिवारिक सदस्य भी यही चाहते हैं कि हमारी ये आदतें जो हैं, या हमारी कहें कि लत जो है, ये छूट जाए। लेकिन अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक नियम ही बना लें कि हम इन आदतों को नहीं अपनाएंगे, और अगर हमने अपना भी रखी है तो जितना जल्द हो सके हम इनको छोड़ेंगे। उसी एक दिवस के बारे में आज हम बात करते हैं, तो वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जी हाँ, इस दिन का जो दिन है वो इसलिए मनाया जाता है कि जो तंबाकू का उपयोग करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो इस दिन के महत्व को समझें और जितना जल्दी हो सके धूम्रपान से अपनी दूरी को बनाकर रखें। 31 मई को

हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और उसका नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना, जो वर्तमान दुनिया भर में हर साल जो है 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता है। और माना जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया था। पिछले 21 वर्षों में दुनिया भर में सरकारों, सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों, धूम्रपान करने वालों और उत्पादकों के उत्साह और प्रतिरोध दोनों मिले हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2007-08 में भारत के 21 राज्यों के 42 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया और सबसे पहले राजस्थान के 2 जिलों जयपुर और झुंझुनू को इसमें शामिल किया गया और गतिविधियां प्रारंभ की गई। वर्ष 2015-16 में जयपुर, झुंझुनू के अतिरिक्त अजमेर, टोंक, चूरू, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और श्री गंगानगर जिलों को, यानी कि कुल 17 जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा ने संकल्प WHA 40.38 पारित किया, जिसने 7 अप्रैल 1988 को एक विश्व धूम्रपान करने वाला ना कहा गया। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में तंबाकू उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के लिए तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया गया था। एक ऐसी कार्रवाई जो कि उम्मीद करते थे कि जो छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए कुछ तो सहायता इसमें प्रदान हो सके और वो ये सोच सके कि अगर हम 24 घंटे के लिए तंबाकू छोड़ सकते हैं तो हम जिंदगी भर के लिए भी तंबाकू छोड़ सकते हैं। 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा संकल्प WHA 42.19 पारित किया गया और 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। तब से WHO ने हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस का समर्थन किया और हर साल एक अलग तंबाकू से संबंधित विषय को जोड़ा। 1998 में WHO ने तंबाकू मुक्त पहल यानी कि TFI की स्थापना की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने और तंबाकू के वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान का प्रयास देने का प्रयास किया गया। ये पहल वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति बनाने की सहायता प्रदान करती है, समाजों के बीच गतिशीलता को प्रोत्साहित करती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल यानी कि FCTC का समर्थन करती है। WHO FCTC एक वैश्विक स्वास्थ्य संधि है जिसे 2003 में दुनिया भर के देशों द्वारा तंबाकू निषेध के लिए काम करने वाली नीतियों को लागू करने के लिए एक समझौते के रूप में अपनाया गया। 2008 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर WHO ने सभी तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। उस वर्ष के दिन का विषय था तंबाकू मुक्त युवा, इसलिए ये पहल जो है विशेष रूप से युवाओं को लक्षित विज्ञापनों, प्रयासों और लक्षित करने के लिए। WHO के अनुसार तंबाकू उद्योगों को युवा उपभोक्ताओं के साथ पुराने, छोड़ने या मरने वाले धूम्रपान वालों को बदलना होगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से ऐसे हम देखते हैं कि जितने भी फिल्में हैं, इंटरनेट है, होर्डिंग्स है, पत्रिकाएं हैं, इनसे युवा ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए ये आग्रह किया गया कि युवा जो है इन चीजों से दूर रहे। 2015 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस ने तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रभाव डाला और तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करके तंबाकू की खपत को कम करने की प्रभावी नीतियों का आकलन किया। 2016 में 31 मई को आयोजित विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठनों ने सरकारों से तंबाकू उत्पादों की सादा पैकेजिंग के लिए तैयार होने का आह्वान किया। 2017 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के विकास के लिए खतरा के रूप में तंबाकू पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य उन खतरों को प्रदर्शित करना है जो कि सभी देशों में नागरिकों के स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण सहित तंबाकू उद्योग सतत विकास के लिए करते हैं। 2018 में WNDT ने अपने विषय पर ध्यान केंद्रित किया, तंबाकू तोड़ता दिल, स्वास्थ्य चुने, तंबाकू नहीं। 2019 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय था तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य। 2020 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय था फेफड़ों पर तंबाकू का खतरा। और अगर हम बात करें 2026 की, तो आज का जो विषय है वो है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। जी हाँ, तो हम सब जो है, जो हम में से कुछ लोग जो है इस आदत से मजबूर हैं, वो कोशिश करें कि इस दिन के महत्व को समझें और जितना जल्दी हो सके अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाकर रखें और इस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ें।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: हम सबको पता है कि दुनिया में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए भगवान ने हमारे लिए माँ को बनाया। और माँ होना भी कोई आसान बात नहीं है। खुद को पीछे छोड़कर अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है और उन्हें अच्छी परवरिश देने के लिए न ही जाने कितने ही त्याग जो है एक माँ को करने पड़ते हैं। अगर हर माँ की खूबियों को हम देखें, उनकी अच्छाइयों को देखें, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के पीछे हर माँ की जो मेहनत होती है, जो लगन होती है, वो सबसे पहले दिखाई देती है। और जिन बच्चों को अच्छी परिवार या माँ की अच्छी परवरिश मिलती है, उन माओं में क्या खूबियाँ होती है उन्हें अगला जान सकता है, क्योंकि अच्छे संस्कार जो होते हैं किसी बच्चे के, अगर हम देखना चाहें तो हमें सबसे पहले मुंह पर हमारे यही निकलते हैं कि जब भी हम किसी बच्चे के अच्छे चीज़ों को देखते हैं, अच्छे संस्कारों को देखते हैं, अच्छी आदतों को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे मुँह से एक ही बात निकलती है कि वाकई में इसके माँ ने इसकी परवरिश बहुत अच्छी की है। तो अगर हम देखें कि एक माँ एक बच्चे की परवरिश में माँ का कितना बड़ा रोल होता है, तो शुरू से लेके अगर हम जीवन पर्यंत देखें तो एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को शुरू से लेके जीवन पर्यंत तक बहुत अच्छी शिक्षाएं देती है और बहुत से अच्छे मार्गदर्शन उनके करती है ताकि उनका जीवन जो है सफल बन सके। हम सभी जानते हैं कि बच्चों की परवरिश में माँ की भूमिका अद्वितीय होती है, सर्वोपरि होती है। और बच्चे की पहली शिक्षिका कहें, मार्गदर्शक कहें या भावनात्मक संबल देने की बात अगर हम करें तो वो सबसे पहले माँ ही देती है। माँ बच्चे को जीवन जीने का ढंग सिखाती है, उसको संस्कार देती है, नैतिक मूल्य सिखाती है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की नींव रखते हैं। अगर हम बात करें कि भावनात्मक जुड़ाव और सुरक्षा की, तो माँ का जो स्पर्श होता है, उसकी जो गोद होती है बच्चे की, दुनिया का जब बच्चा दुनिया में अपना कदम रखता है तो सबसे सुरक्षित जगह जो होती है वो माँ की गोद ही होती है। और जब वो माँ के स्पर्श में आता है, उसके हाथों को माँ टच करती है और जब उसकी पूरी बॉडी को जब माँ टच करती है, तो एक भावनात्मक लगाव जो है बच्चे का अपने आप ही अपनी माँ से हो जाता है। और ये गहरा भावनात्मक जुड़ाव ही बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, जिससे कि वो भविष्य में आत्मविश्वास से भरे और साहसी बन पाते हैं। अगर हम बात करें प्रथम शिक्षिका और संस्कार की, तो बच्चा जो कुछ भी अपने घर में माँ से सीखता है वो ही उसकी पहली पाठशाला होती है। ऐसा नहीं कि माँ उसे अलग से लेके बैठती है और उसे नैतिक मूल्य सिखाती है या अच्छे या बुरे का ज्ञान सिखाती है, लेकिन माँ जो है बातों ही बातों में उसे धैर्य, प्यार, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना जैसे नैतिक मूल्य जो है अपने आप ही सिखा देती है, जो कि शुरू में ही बच्चे के अंदर स्थापित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत उसके साथ चलते हैं। बात करें हम सामाजिकता की और संचार कौशल की, तो माँ बच्चे की पहली भाषा शिक्षक भी बनती है। जैसा माँ बोलती है बच्चा पीछे ही उसे रिपीट करता जाता है। और माँ के साथ बातचीत और कहानियों के माध्यम से बच्चा बोलना, अपनी बात रखना और दूसरों के साथ बातचीत करना सीखता है। ये उसके सामाजिक विकास का आधार होती है। तो माँ की परवरिश जो होती है उसका कोई मोल नहीं होता। धैर्य और सहनशीलता जो माँ उसे सिखाती है, जहाँ बच्चा उसे सीख लेता है वो अपने जीवन में कभी भी मात नहीं खाता। बच्चों की परवरिश में माँ का धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाना और उन्हें सही रास्ते पर लाना माँ की खूबी होती है, जो बच्चे में सहनशीलता और समझदारी विकसित करती है। अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन भी एक माँ होती है जो अपने बच्चों को सिखा पाती है। माँ बच्चे की जरूरतों को, उसकी आदतों को सबसे अच्छी तरह समझती है। वो प्यार के साथ साथ उसे सही अनुशासन भी सिखाती है, जिसका बच्चा जिम्मेदार बनता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखता है। तो माँ की परवरिश अगर हम करें कि बच्चों की परवरिश में माँ की भूमिका जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और एक माँ ऐसी होती है, हमें जब भी कोई चीज़ सीखनी होती है, हम देखते हैं कि हम ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, या कहीं और जो सीखने की जो जगह होती है, कॉलेज होती है, स्कूल होती है, डिग्री कॉलेज होती है, हम वहाँ जाते हैं। लेकिन माँ ऐसी होती है जो हमें बिना किसी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के, बिना किसी और एक्स्ट्रा टाइम दिए जो होती है, वो हमें सब कुछ सिखा जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की परवरिश का कोई मोल नहीं होता। और एक बच्चे की अगर हमें देखनी है कि उसकी परवरिश, अगर उसके संस्कार हमें देखने हैं, तो हमें उसकी माँ को देखते ही पता चल जाता है कि इस बच्चे के

हम सभी के लिए सबसे सुरक्षित अगर हम जगह सोचते हैं तो वो सबसे प्यारा हमारा घर होता है। और हमारे घर में आते ही हमें सुकून मिलता है। हम चाहे पूरी दुनिया घूम के आ जाएं या कुछ घंटों के लिए बाहर चले जाएं, हमें ये रहता है कि कब हम अपने घर जाएं और वहाँ पर जो है हम आराम से रह सकें। हमारा घर हमें सबसे प्यारा होता है। लेकिन अगर उसी घर का माहौल अगर सकारात्मक ना हो, नकारात्मकता अगर वहाँ रहती हो, घर में घुसते ही हमें ऐसा लगे कि नहीं कुछ नेगेटिव सा हो रखा है, तो वो चीज़ें जब होने लग जाती है तो हमारा घर आने का भी मन नहीं करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल जो है सकारात्मक बना रहे, तो उसके लिए हमें कुछ उपाय जो है करने होंगे। घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए हर चीज़ का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो। अगर हम बात करें साफ सफाई से, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल सकारात्मक रहे, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे घर में साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ साफ सफाई के साथ जहाँ वेंटिलेशन होना यानी कि शुद्ध हवा आना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं जो घर में रह रहे हैं यानी कि जो सदस्य रह रहे हैं, उन सदस्यों के बीच खुशनुमा संवाद होना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से हम जो है अपने घर का माहौल जो है सकारात्मक बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि वास्तु और मनोविज्ञान के साथ साथ अगर हम बात करें कि साफ सुथरे घर में जो है शांति का वास होता है। और हमारे पूर्वज हमें शुरू से ये सिखाते आए हैं कि जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ हमें पता है कि जहाँ लक्ष्मी का वास होगा वहाँ सुख शांति सुख संपदा की कोई भी कमी नहीं होगी। तो हमें जो है अपने घर की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने घर को साफ सुथरा बनाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार को हमेशा हमें साफ और आकर्षक जो है रखना चाहिए। उसके लिए हम रख सकते हैं, अगर हमसे खुद से साफ सफाई नहीं हो सकती है तो हम घर पे जो है मैट रख सकते हैं साफ सफाई के लिए। लेकिन ऐसा ना करें, आपके घर में आप जो है बिल्कुल भी साफ सफाई ना रखें और आप आलस के मारे, क्योंकि आजकल हमारा ज्यादातर टाइम जो है हम देखते हैं कि मोबाइल ले बैठा है। हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है हम मोबाइल पर बैठ जाते हैं, मूवी देखने लग जाते हैं और बस मोबाइल को स्क्रॉल करते जाते हैं। हमारे आगे रील्स आती जाती हैं, हम उसे स्क्रॉल करते जाते हैं, 3-4 घंटे कब निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर हम चाहते हैं कि और फिर उसके बाद हमें घर के बहुत से काम जो हैं एक साथ ही याद आ जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि कौन सा काम हम पहले करें और कौन सा बाद। और इसी की वजह से हम जो है कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ित तो हो जाते हैं। मानसिक हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, और फिर वो सारा गुस्सा जो है हम अपने पारिवारिक सदस्यों पर निकालते हैं, यानी कि हमारे बच्चों पर, हमारे पति पर। हमें लगता है कि ये जो है हमारे काम में सहयोग नहीं करते, इस वजह से हमारा सारा काम जो है टाइम पर नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं कि अगर हमें थोड़ा भी टाइम मिलता है, आराम करने का टाइम मिलता है, तो हमें उसमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम जो है अपने घर को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी सफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें आपको कि आप सारा दिन ही जो है घर की सफाई में लगे रहें या आप अपना सारा समय जो है घर पर दें, नहीं। लेकिन जो जितनी ज़रूरत के हिसाब से हमें घर की सफाई करनी होती है उसको जो है हमें ज़रूर करना चाहिए। अनावश्यक चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको हमें हटा देना चाहिए। हम देखते हैं कि घर में बहुत बार ऐसा कबाड़ या कचरा होता है जिसको हम रखते जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हमें आलस रहता है कि इनमें से जो सही होगा उसको हम अंदर रखेंगे, जो खराब है उसको हम बाहर निकालेंगे। और ऐसे करते करते हम बहुत सा ऐसा सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो कि हमारे घर में अनावश्यक रूप से पड़ा रहता है। और जो चीज़ें ऐसी अनावश्यक रूप से या कहें कि गंदगी के रूप में या कूड़े के रूप में हमारे घर में रहती है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी निकलती रहती है उनसे और वो हमारे घर में जो है नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके घर से कचरे को या अनावश्यक जितनी भी चीजें हैं उनको हमें हटा देनी चाहिए। बात करें हम प्राकृतिक रोशनी की और हरियाली की, तो हमारे घर में प्राकृतिक रोशनी और हरियाली होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम आंखें खोलते हैं सुबह, हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि जब भी इसीलिए कहा जाता है कि सुबह हमें जो है घूमने जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम घूमने जाते हैं कि तो हमें आसपास जो है ग्रीनरी दिखाई देती है जो कि हमारे आँखों को सुकून देती है। और जब हम नंगे पाँव जो है घास पर चलते हैं या आसपास जो है हमें फूलों की सुगंध जो सुबह सुबह मिलती है, उसकी वजह से हमारा मन खुश हो जाता है। और अगर उन्हीं चीज़ों को हम अपने घर पर अपना लें, यानी कि प्राकृतिक हरियाली अगर हम अपने घर पर रखें, वेंटिलेशन जो है अपने घर पर हम ऐसा रखें कि हमारे आसपास जो है शुद्ध हवा आती रहे, तो उसका भी हमारे घर पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सुबह के समय जो है घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खोलें ताकि ताज़ा हवा और धूप जो है अंदर आ सके। पौधों में घर में हम मनी प्लांट है, तुलसी है, लीली है, ये पौधे लगा सकते हैं। ये हवा को
शुद्ध करते हैं और हमारे मन को शांति देते हैं। इनकी खुशबू जो है हमारे मन को जो है सुकून देती है। इसलिए ज़रूरी है प्राकृतिक सुगंध यानी कि फूलों और सुगंधित तेलों का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में एक सुगंधित माहौल बना रहे। हम देखते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा सुकून आने का वहाँ रीज़न यही होता है कि जब हम मंदिर में घुसते हैं तो हमें जो है वहाँ पर धूप की, अगरबत्ती की और बहुत अच्छी ऐसी खुशबू आती है जो कि हमारे मन को शांत करती है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न भी होते हैं कि हमारे घर को अगर हम सकारात्मक बनाने चाहते हैं तो उसमें हम कपूर का या धूप का उपयोग कर सकते हैं, या अच्छी क्वालिटी की जो सुगंधित जो प्राकृतिक तेल आते हैं उनका इस्तेमाल भी हम जो है कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर का माहौल जो है वो सकारात्मक बना रहे। लास्ट में बात आती है हमारे पारिवारिक संवाद की और हमारी आदतों की, यानी कि घर में रहने वाले जितने भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं उनके बीच में एक खुला संवाद और अच्छा संवाद होना बहुत ज़रूरी है। साथ में बैठकर भोजन करना यानी कि दिन में कम से कम एक बार परिवार के सभी सदस्यों को साथ कर बैठकर खाना खाना चाहिए, जिससे कि हम जो है एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके, एक दूसरे के दिन की जानकारी जो है हमें मिल सके, हम अपने बच्चों के बारे में जान सके, बच्चे जो हैं हमारे कार्यों के बारे में जान सके। और इस तरह से जब हमारे बीच में एक खुला संवाद होता है तो हमें एक शांति और सुकून मिलती है कि हमें जो है हमारे बच्चों के बारे में, हमारे पारिवारिक सदस्यों के बारे में सब कुछ पता है। और अगर उन्हें कोई परेशानी होती है, हमें कोई परेशानी होती है और हम एक दूसरे से बैठकर उन बातों को सुलझा लेते हैं तो बहुत सी हमारी परेशानियां खुद खत्म हो जाती हैं। सकारात्मक बातचीत जो है अगर हम करें कि एक दूसरे की अगर काम अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करें, आभार व्यक्त करें, घर में ऊंची आवाज में चिल्लाकर बात करने से बचें, अगर इस तरह का माहौल हम अपना लेते हैं तो हमारे घर में एक सकारात्मक वेव जो है आने लगती है। मंत्र या संगीत जो है वो भी बहुत हद तक जो है एक सकारात्मक प्रभाव हमारे घर पर डालते हैं। सुबह शाम 10-15 मिनट के लिए आप हल्का संगीत बजा सकते हैं, या आपको मंत्र बजाने का शौक है या किसी और तरह की आरती या भजन सुनने का शौक है तो आप 10-15 मिनट के लिए उसको जरूर चलाएं, हल्के उसको आवाज में, धीमी आवाज में उसको चलाएं तो घर का माहौल जो है सकारात्मक बनता है। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अपनाकर जो है हम अपने घर का माहौल जो है सकारात्मक बना सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: हम सभी को पता है कि हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हम आपको बताते भी हैं कि आपको दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और जब ये गर्मी का मौसम है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें जो है पानी की कमी ना हो जाए। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम आपको बताते हैं कि पानी की कमी ना हो जाए, आपको पानी पीना चाहिए, आपको पानी जो है हर घंटे में पीना चाहिए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि

हमारे कहे साथ के जो है वो ये कर बैठते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पानी पीने लग जाते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, और इसके चलते वो जो है बहुत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। और आपको पता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो पानी भी अगर हम बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी की कमी से ही हमें जो है शरीर में रोग होते हैं, पानी की अधिकता से भी बहुत से रोग जो है हमें शरीर में होने लगते हैं। शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में और बहुत तेजी से पानी पीने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गुर्दे जो होते हैं हमारे प्रति घंटे केवल 0.8 से लेकर कहीं या 1 लीटर तक पानी ही निकाल सकते हैं, वो भी हमारे शरीर में पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से निकलता रहता है। और बहुत अधिक अगर हम इससे ज़्यादा पानी जो है हर घंटे पीते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है पानी की अति सहायता से होने वाले रोग जो है हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना भी एक समस्या है, भले ये सुनने में हमें अजीब लगता हो, लेकिन ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। अक्सर हम सुनते यही हैं कि पानी की कमी की वजह से हमें रोग हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम 10 बातें ऐसे सुनते हैं कि पानी की कमी की वजह से रोग हो रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं एक बंदा या दो बंदे ऐसे भी मिल जाते हैं जहां उन्हें ये लगता है कि पानी की अधिकता से जो है उनको रोग होने लगे हैं। और जब हम एक स्वस्थ शरीर में रहते हैं, जब हमारे गुर्दे जो है अच्छे से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत पानी अधिक पी भी लिया जाए तो वो हमारे यूरिन के माध्यम से या हमारे पसीने के माध्यम से जो है निकल सकता है। लेकिन कहीं अगर व्यक्ति थोड़ा सा बीमार है, थोड़ा सा वो स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, और अगर उसके गुर्दे थोड़े कम काम करते हैं, तो उनके लिए ये समस्याएं जो है गंभीर हो सकती है। शरीर में सामान्य से अधिक पानी होना अति जलन कहलाता है, जिसे लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। उन्हें आमतौर पर अधिक पानी पीने की चिंता नहीं करनी चाहिए जिनके गुर्दे जो है स्वस्थ होते हैं, लेकिन अगर कहीं भी ये लगता है कि गुर्दों में थोड़ी बहुत मात्रा में भी अगर कहीं कमी है तो हमें पानी की अतिशयता से बचना चाहिए। गुर्दे ये सुनिश्चित करते हैं कि शरीर को आवश्यक मात्रा में पानी मिले और अतिरिक्त पानी जो है वो शरीर से बाहर निकल जाए। औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति को अति जलन की स्थिति में आने के लिए कह सकते हैं कि हम 6 गैलन पानी जो है रोजाना पीना पड़ता है, और उतना हम नहीं पी पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी जो है पी लेते हैं। लेकिन कुछ कहें कि एक दिन पी लिया या कुछ दिन छोड़कर अगर हम पानी पी लेते हैं तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम रोजाना ऐसा कर रहे हैं, अगर हम जो है 2 लीटर से 3 लीटर से पानी जो है ज़्यादा पी रहे हैं, तो वो हमारे लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अत्यधिक पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, जिसे कि मेडिकल भाषा में वाटर इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है, और इसे हाइपोनेट्रेमिया भी कहा जाता है। जब आप क्षमता से ज़्यादा पानी पीते हैं तो खून में मौजूद जो सोडियम का स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि मस्तिष्क में या फेफड़ों में जो है हमारी सूजन आने लगती है, किडनी या गुर्दे पर दबाव ज़्यादा जो है पड़ने लगता है, और ज़्यादा पानी पीने से किडनी को उसे छानने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे अन्य अंगों पर भी दबाव पड़ने लगता है और हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कोशिकाओं में सूजन आने लगती है, खून में सोडियम पतला होने से पानी की जो पानी है वो शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाने लगता है, जिससे कि हमारे मस्तिष्क की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें सूजन आने लगती है। गंभीर लक्षण हम इसके आपको बता सकते हैं कि इसमें आपको जी मिचलाना हो सकता है या मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, सिरदर्द जो है लगातार बन सकता है, थकान होती है, या भ्रम की स्थिति जो है आपको हो सकती है कि आपको कहीं ना कहीं जब ये समस्याएं होने लगती है तो आपको थोड़ा सा सचेत जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर हो जाना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक जो स्वस्थ वयस्क होता है उसको दिन में लगभग हम कह सकते हैं 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है, और अगर हम इससे ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंतित रहते हैं, ध्यान रखें कि अगर ऐसा कहीं भी आपको होता है तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत हो जाएं और अपने स्वास्थ्य पर जल्दी ध्यान देना शुरू करें।

महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2 बजे मिड डे न्यूज। 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचारों के लिए। कृपया समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक

0: सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का

0: संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचाने और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड,

0: मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले दो दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। फिल्म थी राजा और रंक। इस गीत को शब्द दिए थे आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे हैं जोरों का गुलाम फिल्म का गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और आदेश श्रीवास्तव की। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत आदेश श्रीवास्तव का है।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म का गीत अनुराधा पोटवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। इस गीत को लिखा था अरुण भैरव ने और संगीत जतिन ललित का था।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं

107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी।

तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

श्रोता अभी अपने रेडियो सेट पे सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन का था। इस गीत से पहले की प्रस्तुति आपने सुनी थी अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाज में दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। इस गीत को शब्द दिए थे फैज अनवर ने और धुन बनाई थी।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे दिल विल प्यार वार प्यार व्यार फिल्म से शान की आवाज में। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत आर डी बर्मन का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FM 102.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। केशव देव तुम्हार की ओर से शाम के 5 बज चुके हैं और आपको इंतजार रहता है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युवाणी का। तो आज के कार्यक्रम में जुड़े रहिए हमारे साथ 100.7 FM पर।

दोस्तों आज है 31 मई का दिन और आज का दिन हम खास तौर पर युवाओं के लिए और हमारे जो नव युवक हैं उनके लिए एक खास दिन है, क्योंकि आज का दिन है जो कि हम तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो तंबाकू का सेवन आज विश्व भर के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। धूम्रपान, गुटखा, खैनी, जर्दा और अन्य तंबाकू उत्पाद न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। भारत जैसे युवा देश में तंबाकू मुक्त राष्ट्र का सपना तभी साकार हो सकता है जब युवा वर्ग इस अभियान का नेतृत्व करे। यहाँ युवाओं की इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा भूमिका हो जाती है। युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति, ऊर्जा और भविष्य होते हैं। उनकी सोच, आदतें और कार्य समाज के लिए एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तंबाकू मुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि स्वयं तंबाकू से दूर रहना, किसी भी सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि युवा तंबाकू का सेवन न करने का संकल्प लें तो वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जागरूकता फैलाना, युवा विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों और डिजिटल माध्यमों के जरिए तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। रैलियां, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताएं और जनसंपर्क कार्यक्रम इस दिशा में प्रभावी साधन है। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग, आज सोशल मीडिया युवाओं का सबसे प्रभावशाली मंच है। युवा तंबाकू निषेध संबंधी संदेश, वीडियो और जन जागरूकता अभियानों को व्यापक स्तर पर प्रसारित कर सकते हैं, साथियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अक्सर युवा मित्रों के प्रभाव में तंबाकू सेवन शुरू करते हैं। ऐसे युवाओं का दायित्व है कि वे अपने साथियों को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करें और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। स्वस्थ गतिविधियों में भागीदारी, खेलकूद, योग, संगीत, साहित्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को तंबाकू जैसी बुरी आदतों से दूर रखती है। स्वस्थ जीवन शैली तंबाकू मुक्त समाज की आधारशिला है। तंबाकू के हमें बहुत से दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां, उच्च रक्तचाप और अनेक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। इसके अलावा यह आर्थिक नुकसान और पारिवारिक तनाव भी बढ़ाता है। इसीलिए तंबाकू से दूरी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय है। इसका निष्कर्ष हम निकालना चाहें तो तंबाकू मुक्त राष्ट्र का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष तौर पर जो हमारे युवा साथी हैं, उनकी भागीदारी आवश्यक होती है। यदि युवा जागरूकता, आत्मानुशासन और सकारात्मक नेतृत्व का परिचय दें तो एक स्वस्थ, सशक्त और तंबाकू मुक्त भारत का सपना अवश्य साकार होगा। युवा शक्ति ही इस परिवर्तन की सबसे बड़ी आशा है, आधार है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बातें और भी होंगी तंबाकू निषेध दिवस पर। एक वार्ता भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एक राजस्थानी लोकगीत।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दोस्तों, इस अंतराल से पहले हमने एक लोकगीत सुना था, मत पियो मारा छेल तमाकुड़ी। तो इसमें भी एक समस्या का जो बात थी वो भी थी कि घर वाली भी छोड़कर जा सकती है। तो इस प्रकार की जो हमारे सामने समस्याएं हैं उनका समाधान हम युवा ही कर सकते हैं। और देखिए, हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बातचीत की थी कि हम एक वार्ता आपके लिए लेकर आए हैं, तो पहले वो आपको वार्ता सुनाते हैं, फिर उसके बाद और भी बातें आपसे होंगी। तो वार्ता हमारे साथ है कि तंबाकू मुक्त जीवन स्वस्थ जीवन का आधार। आइए सुनते हैं अरविंद खाड़िया की ये वार्ता।
5: श्रोताओं, तंबाकू आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों की ओर ले जाता है, चाहे वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, गुटखा, जर्दा, खैनी या अन्य किसी रूप में तंबाकू का सेवन किया जाए। इसका प्रभाव शरीर पर बेहद हानिकारक होता है। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक और कई अन्य गंभीर रोगों का प्रमुख कारण है। तंबाकू में हजारों प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, जिनमें से अनेक कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। निकोटिन नामक तत्व इसकी लत लगाता है, जिसके कारण व्यक्ति चाहकर भी आसानी से इसे छोड़ नहीं पाता। हमारे देश में भी तंबाकू सेवन एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। चिंताजनक बात यह है कि युवाओं और किशोरों में भी इसका चलन बढ़ रहा है। कई बार मित्रों के दबाव, फैशन तनाव या जिज्ञासा के कारण युवा इसकी शुरुआत कर देते हैं और बाद में यह आदत लत का रूप ले लेती है। तंबाकू का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर तंबाकू सेवन से ही सीधे जुड़े हुए होते हैं। जो लोग गुटखा या खैनी का सेवन करते हैं उनमें मुंह के कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दांतों और मसूड़ों की समस्याएं, सांस की दुर्गंध, भोजन निगलने में कठिनाई और चेहरे की विकृति जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। सिगरेट और बीड़ी पीने वालों के फेफड़े धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी और फेफड़ों का संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, तंबाकू का धुआं आसपास मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसे निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। परिवार के सदस्य, विशेषकर बच्चे और महिलाएं इसके दुष्प्रभाव से प्रभावित होती हैं। तंबाकू का नुकसान केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक रूप से भी व्यक्ति और परिवार को कमजोर बनाता है। प्रतिदिन तंबाकू पर खर्च होने वाली छोटी छोटी राशि वर्ष भर में एक बड़ी रकम बन जाती है। यदि यही धन शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषक या बचत में लगाया जाए तो परिवार की स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन तंबाकू की लत व्यक्ति को आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी भारी खर्च की ओर भी धकेल देती है। तंबाकू का सामाजिक प्रभाव भी कम नहीं है। परिवार में तनाव, कार्य क्षमता में कमी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। कई बार कम उम्र में भी गंभीर बीमारियां व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को कम कर देती हैं। इससे परिवार और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। आज विश्व तंबाकू निरोगी दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना और उन्हें इससे दूर करने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन जागरूकता अभियान, रैलियां, संगोष्ठियां और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे दृढ़ संकल्प करना होगा। शुरुआत में कुछ कठिनाइयां अवश्य हो सकती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति और परिवार के सहयोग से यह संभव है। तंबाकू छोड़ने के बाद शरीर में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में स्वाद और गंध महसूस करने की क्षमता बेहतर होने लगती है। धीरे धीरे फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार आता है और हृदय रोगों का खतरा कम होने लगता है। तंबाकू छोड़ने के लिए व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद ले सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंबाकू छोड़ने का निर्णय स्वयं व्यक्ति को लेना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, हम सभी का दायित्व है कि अपने परिवार, मित्रों और समाज को तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करें और बच्चों, युवाओं को विशेष रूप से इसके नुकसान बताएं ताकि वे इस लत से दूर रहें। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम नशा मुक्त और तंबाकू मुक्त जीवन को अपनाएं। विश्व तंबाकू निरोगी दिवस पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करेंगे। हमारा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन को बचा सकता है और आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ भविष्य दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।
4: तो दोस्तों, अभी हमने एक वार्ता सुनी, तंबाकू मुक्त जीवन स्वस्थ जीवन का आधार। अरविंद खाड़िया की वार्ता आपने सुनी और हो सकता है आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और भविष्य में तंबाकू को छोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, और आप भी करेंगे और साथ अपने दोस्तों को भी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आपके लिए एक प्यारा सा गाना है, तो बने रहिए हमारे साथ, गानों के साथ, फिल्म संगीत के साथ और लोकगीत के भी साथ।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से कार्यक्रम युववाणी केशर देव तंवर के साथ। और गाने से बाद अब आपको बातचीत करते हैं शेखावट की धरोहर संरक्षण और युवाओं की भूमिका, इस विषय पर एक छोटी सी बातचीत करते हैं कि राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र अपनी भव्य हवेलियों, रंग बिरंगे भित्ति चित्रों, ऐतिहासिक कुओं, बावड़ियों, मंदिरों और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में फैला यह क्षेत्र ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी की धरोहर न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय के साथ उपेक्षा, प्राकृतिक क्षरण और आधुनिकता के प्रभाव के कारण यह अमूल्य धरोहर संकट का सामना कर रही है। ऐसे में इसके संरक्षण की भूमिका युवाओं के द्वारा महत्वपूर्ण हो जाती है। धरोहर संरक्षण का अर्थ केवल पुराने भवनों को बचाना नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ी संस्कृति, लोक कला, लोक भाषा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक स्मृतियों को सुरक्षित रखना है। शेखावाटी की अनेक हवेलियों के भित्ति चित्र धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। कई ऐतिहासिक भवन रख रखाव के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। यदि समय रहते इनका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां अपनी इस गौरवशाली विरासत से वंचित हो सकती है। युवा वर्ग इस दिशा में प्रभावी योगदान दे सकता है। सबसे पहले युवाओं को अपने स्थानीय धरोहर के महत्व को समझना और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। सोशल मीडिया, ब्लॉग, वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे शेखावाटी की कला और इतिहास को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संरक्षण के लिए जन समर्थन भी प्राप्त होगा। युवा स्वयंसेवी अभियानों के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता, वृक्षारोपण और जन जागरूकता कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में धरोहर संरक्षण विषय पर संगोष्ठियां, चित्र प्रदर्शनियां और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इतिहास, पुरातत्व और पर्यटन से जुड़े युवा शोध और दस्तावेजीकरण का कार्य करके भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज के डिजिटल युग में युवा धरोहरों का फोटोग्राफिक और डिजिटल अभिलेखन कर सकते हैं, जिससे उनकी जानकारी सुरक्षित रहे और भविष्य में संरक्षण कार्यों में सहायता मिले। स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के साथ मिलकर युवाओं की सहभागिता संरक्षण प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकती है। मित्रों, शेखावाटी की धरोहर केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की है, किंतु युवा शक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जागरूकता, सहभागिता और नवाचार के माध्यम से युवा शेखावाटी की अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर रख सकते हैं।

जी दोस्तों, हमें इन चीजों के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भी अनुभव होना आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ऐसा होने वाला है कि हमारा जो परिवार है, पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे और आज का समय ऐसा आ गया है कि हम एकल परिवार में रह रहे हैं। एकल परिवार का मतलब है एक हस्बैंड वाइफ और साथ में

0: एक या दो बच्चे। तो इन चीजों से हमें अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो संयुक्त परिवार के प्रति जागरूकता है वो होनी भी आवश्यकता है, क्योंकि परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का भी हमें निर्वहन करना होता है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर होती युवा पीढ़ी और परिवार की आवश्यकता पर छोटी सी बातचीत हम करते हैं कि श्रोताओं, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, सहयोग और संस्कार और सुरक्षा का आधार भी है। परिवार ही व्यक्ति को जीवन के मूल्यों, कर्तव्यों और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देता है। वर्तमान समय में आधुनिक जीवन शैली, तकनीकी प्रगति और बढ़ती व्यस्तताओं के कारण युवा पीढ़ी धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर होती दिखाई दे रही है। यह स्थिति समाज के लिए चिंता का विषय है। युवा पीढ़ी के दूर होने के कई कारण हैं। आज के युवाओं का अधिकांश समय शिक्षा, करियर निर्माण, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से व्यतीत होता है। महानगरों की ओर पलायन, एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति और उपभोक्तावादी सोच ने भी पारिवारिक संबंधों को प्रभावित किया है। कई बार युवाओं को लगता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां उनकी स्वतंत्रता में बाधा बनती है। परिणाम स्वरूप वे बुजुर्गों की देखभाल, पारिवारिक निर्णयों और सामाजिक दायित्वों को दूरी बनाने लगते हैं। इसके दुष्परिणाम भी हैं। जब परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होते हैं तो पारिवारिक एकता कमजोर पड़ने लगती है। बुजुर्गों में अकेलेपन की भावना बढ़ती है और बच्चों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। पारिवारिक संवाद कम होने से भावनात्मक दूरी बढ़ती है, जिससे तनाव और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिवार की मजबूती के बिना समाज भी कमजोर होता है। परिवार की आवश्यकता। परिवार व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा और आत्मीयता प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों में भी परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। परिवार से मिलने वाले संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच परिवार मानसिक संतुलन, सहयोग और आत्मविश्वास का स्रोत है। युवा पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि परिवार और व्यक्तिगत विकास एक दूसरे के पूरक हैं। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय परिवार के लिए निकालना, बुजुर्गों का सम्मान करना, घर के कार्यों में सहयोग देना और पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता निभाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तकनीक का उपयोग संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उनसे दूरी बढ़ाने के लिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों की दूरी बनाना किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकते। परिवार हमारे जीवन की वह नींव है जिस पर सुखी और संतुलित समाज का निर्माण होता है। इसलिए आवश्यक है कि युवा पीढ़ी आधुनिकता और पारिवारिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परिवार की एकता और गरिमा को बनाए रखें। यही मजबूत परिवार और सशक्त समाज की आधारशिला है।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक।

दोस्तों युवाणी कार्यक्रम में हमारा कार्यक्रम होता है शेखावाटी की धड़कन, और शेखावाटी की धड़कन में हमारे पास एक ईमेल पहुंचा है जो कि लिखा है सुभाष चंद्र जी ने चुनाराम की ढाणी तारानगर से, और ये लिखते हैं कि कभी भी बड़ी खाई दो छोटी छोटी छलांग से पार नहीं की जा सकती है, इसलिए जब कभी बड़ी छलांग लगाने की आवश्यकता हो तो पीछे ना हटें, कुछ बड़ी समस्याएं बड़े कदम उठाने में भी दूर हो सकती है। तो सही बात कही है इन्होंने कि कभी भी बड़ी खाई दो छोटी छलांग से पार नहीं की जा सकती है, एक प्रेरणादायक कहावत है। इसका अर्थ है कि जीवन में कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें आधे अधूरे प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता, बड़ी सफलता पाने के लिए साहस, पूरा समर्पण और एक बड़ा निर्णय लेना आवश्यक होता है। यह कहावत हमें सिखाती है कि डर और संकोच छोड़कर पूरा प्रयास करना चाहिए, कठिन कार्यों में अधूरी तैयारी या कमजोर कोशिश अक्सर असफलता देती है, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता है तो केवल थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे पूरी मेहनत और नियमित अभ्यास करना होगा। इसलिए यह कहावत हमें जीवन में साहसी और पूर्ण प्रयास करने की प्रेरणा देती है।

तो दोस्तों ये था कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर youthexpresschuru@gmail.com पर अपने ईमेल भेजकर। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो दोस्त केशव देव तंवर को इजाजत। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम विवरण। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी चुरू से किया गया। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी सभा के शेष और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी और उनका प्रसारण समय। शाम 6:10 पर देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे। शाम 7 सुनिए खेती और गृहस्थी कार्यक्रम में चर्चाएं, मृदा में जिप्सम की उपयोगिता, खेती किसानी और संचार क्रांति, सांगरी और केर की उपयोगिता। रात 8 सुनिए हमारे केंद्र से आकाशवाणी 890 पर विशेष भेंट वार्ता, सुरेंद्र डी सोनी से आरती सोनी की बातचीत। इस कार्यक्रम का निर्देशन किया अमित कुमार ने, प्रस्तुति विनोद हल्किया की। रात 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:15 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से लोक संगीत का कार्यक्रम।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुगुंज कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से। कल की पहली सभा में 6:10 पर चिंतन कार्यक्रम में सुनिए सलाह लेना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:45 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। 7:20 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का अध्याय 393। 7:30 पर नमस्कार चूरू कार्यक्रम में सुनिए चर्चाएं वैश्विक अभिभावक दिवस विश्व दुग्ध दिवस और छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। 8:30 पर सुनिए झलकी। 8:45 पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से समाचार तरंग कार्यक्रम। 9:10 पर सुनिए देशगान। 9:15 पर फिल्मी कवालियों का कार्यक्रम महफिल। 9:30 पर सुनिए एक ही कलाकार पर आधारित कार्यक्रम चित्रलोक। 10 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। दिन में 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। दोपहर 12 बजे सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। माटी के स्वर कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे आरती सोनी और साथियों से कुछ लोक रचनाएं। 1:05 पर कार्यक्रम होगा घर आंगन। चर्चाएं होंगी धूप में सनबर्न होने पर क्या करें, धूप से निकलने से पहले करें अपनी त्वचा की देखभाल, साथ ही तरबूज का सेवन कब करें। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल की पहली सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। FM 107.7 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी चूरू की दूसरी सभा के कार्यक्रम। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली है।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड

0: सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुँचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और शंकर महादेवन की आवाज में परदेश फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी का था गीत और नदीम श्रवण का था संगीत। और इसी गीत के साथ फिल्मी देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 MHz पर। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली।

सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स

0: केवलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिकशक्तिं दक्षिणपूर्व एशियादेशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्यरिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात् रक्षणं प्राप्तुं आमपन्नम्, तक्रम्, सत्तुपेयम्, बेलपन्नम्, पानकम्, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभव निहित अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्याम् प्रतियोगितायाम् प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागम् गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायाम् धावन प्रतियोगितायाम् विजेतृभ्याम् गुरिन्दर वीर सिंह तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्याम् सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि अद्य उक्तवान् चिंतने कर्मणि च नवोन्

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम
3: पर दादी
1: हाँ
3: आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
8: हर घर सूर्य घर
9: तुझे कॉलेज का टाइम याद है
10: अरे कॉलेज की यादें छोड़ी अब कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
9: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
10: कहाँ से पता चलेगा
9: उद्गम से RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ
11: आज ही सर्च करूंगा
9: तो आज की चाय तेरी तरफ से
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
12: नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुई और IPL क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें जो कुछ नया कर सबको प्रेरणा देते हैं। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़ने का आग्रह किया।
1: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है

0: उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
1: मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। स्वदेशी पेय पदार्थों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इन्हें अपनाने की अपील की।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने हाल ही की अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार द्वारा चोल काल की प्राचीनतम पट्टिकाओं को भारत को सौंपने पर इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के उत्साह का जिक्र करते हुए देश के युवा साथियों से इस विधा में पारंगत होने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े विषय पर क्लब बनाकर नया सीखने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों, राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों तथा गांव कस्बों की बातों के साथ गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रांची में संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिकॉर्डधारी विजेताओं को बधाई देते हुए इसे देश के खेल भविष्य के लिए उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर राज्य भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें तथा नवाचार अपनाकर अपने कौशल में बढ़ोतरी करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
1: खेती में उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जन प्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

0: कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश ओला ने बताया कि प्रस्तावित नीति में सामान्यतः भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लीज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नई नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित आवासीय तथा सामाजिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखंड आवंटन, प्रबंधन तथा निस्तारण हो सकेगा। एनआईसीडीसी द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित ये नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर उनका पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। टिफनी ट्रंप की जैसलमेर यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ विशेष सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। टिफनी के जैसलमेर आगमन से इस पर्यटन नगरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला मुख्यालयों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। जालौर में निकाली गई रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर नाथो तालाब पर कार्यक्रम रख जल पूजन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के तहत भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। बालोतरा के जसोल में प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह पाली के तखतगढ़ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गंगा जल का पूजन कर आमजन को शपथ दिलाई। करौली के पांचना बांध पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन ने वृक्षारोपण और जल पूजन किया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, MPT, रिचार्ज शाफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: जोधपुर की बड़ली ग्राम पंचायत में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलाधिकारियों के साथ बड़ली भैरूजी तालाब पर श्रमदान कर आम जन से सहभागिता निभाने का आह्वान किया। प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से बना हुआ आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ जगहों पर आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलने और विभिन्न स्थानों पर बरसात के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना, कुचामन के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर के लिए येलो अलर्ट बताया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के 19वें सीजन का फाइनल

0: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमें चौथी बार एक दूसरे के सामने होंगी। पहले तीन मैचों में आरसीबी ने 2 में और गुजरात टाइटंस ने 1 में जीत हासिल की थी। दोनों ही टीमों ने लीग मुकाबलों में 9-9 जीत दर्ज की थी और समान अंक हासिल किए थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। झालावाड़ जिले के 3 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डेस्क से सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार, डीएसपी प्रेम कुमार और डीएसपी हर्षराज खरेड़ा को ये सम्मान दिया गया है। इन्हें विभिन्न अभियानों, जांच और कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी बार डीजीपी डेस्क मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में एसपी रहते हुए भी उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। वहीं हर्षराज खरेड़ा को ऑपरेशन क्लीन राइड और प्रेम कुमार को ऑपरेशन शटर डाउन में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपखंडों के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि परिवादियों को त्वरित लाभ मिले। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले में कोई भी पुराना राजस्व मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा एक ही दिन में 237 मामलों की सुनवाई कर 175 का निस्तारण किए जाने की भी सराहना की। झालावाड़ पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके तहत झालावाड़ में मामा भांजा चौराहे से गावड़ी तालाब और भवानी मंडी रोड तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस मार्ग पर यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले तथा ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा कैंपस प्लेसमेंट शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि ये शिविर मिनी सचिवालय में लगाया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान फील्ड ऑफिसर, सेल्स प्रतिनिधि, मशीन ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए। झालावाड़ में पिछले दिनों राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता रखी गई। इसमें उदयपुर के व्यांश भटनागर ने ओपन वर्ग का खिताब जीता। वहीं बालिका वर्ग में टीना ब्याडवाल चैंपियन बनी। जिला शतरंज संघ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि व्यांश ने सभी 6 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत विकास परिषद की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं को 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक से रतौंधी और अंधता जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इससे दस्त और निमोनिया के घातक प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर

साजिद खान ने बताया कि ये खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों उप स्वास्थ्य केंद्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर उपलब्ध करवाई गई है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते

0: नशा माफिया से जुड़े अपराधियों पर एक्शन लिया गया। उनके द्वारा बनाई गई दुकानों और मकानों तथा अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
1: खेती माए उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए कास्तकारा ने बकत माथे सलाह देने रे खातिर कालेसू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। 30 जून ताई चालन वाला ई अभियान रो शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला सु करेला। अभियान रे चालता पंचायत स्तर माथे सक्रिय भागीदारी और योजनावां रो लाभ सीधे गांवां ताई पहुंचायो जावणो पक्को करयो जावेला। कृषि मंत्री सगला राज्यां रा मुख्यमंत्रियां सु इन अभियान माए वारी भागीदारी री खातिर बात करी है। श्री सिंह केंद्रीय मंत्रियां और दूजा जनप्रतिनिधियां सु भी इन पहल माए भेड़ा होने री अरज करी है। वाने कृषि विज्ञान केंद्रां ICAR संस्थाना कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अहलकारा साथ है वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी रे साथ है इन अभियान ने आगे बढ़ावन री अरज करी है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडकोरी भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति ने सरकार मंजूरी दे दी है। रिडकोरा मुख्य कार्यकारी अहलकार सुरेश ओला बतायो कि प्रस्तावित नीति माए सामान्यतः भूखंडारो आवंटन 99 वर्ष री लीज माथे करो जावेला। बठीने फ्लैटेड फैक्ट्री प्लग एंड प्ले वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जड़ा विशेष खेतरा रे खातिर 33-66 वर्ष ताई रो इन लीज रो प्रावधान राख्यो गयो है। जल शक्ति मंत्रालय काले नवी दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास माथे राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करेला। इन रो लखस भारत रे जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने मजबूत करनो है। मंत्रालय कहो है कि इन कार्यक्रम रो खास आकर्षण एक ऐडी पहल री शुरुआत करनो है जिन रो लखस जल संसाधन प्रबंधन पेयजल और जलवायु परिवर्तन सु निपटनो है। कार्यक्रम रे चालता जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रे बीचे जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन खातिर एक समझौता ज्ञापन माथे दस्तखत कराया जावन री आस है। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। प्रदेश माए चलाया जा रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत आज भी कई गतिविधियां राखी जी। जिला मुख्यालय मथे साइकिल रैली निकाल रहे लोगों ने पानी बचावन रो संदेश दियो गयो। जालोर माए निकाली जी रैली माए बड़ी तादाद माए युवा मा हिस्सो लियो। चुरूरा पुलिस लाइन मैदान माए राखी जा आश्रम दान कार्यक्रम माए लोगां बढ़ चढ़ भागीदारी निभाई। इन मौके माथे नाथो तालाब माथे कार्यक्रम राखर जल पूजन करयो गयो। सरहदी जिला जैसलमेर माए अभियान रे तहत भीषण गर्मी ने बीचे राहगीरा ने शरबत और नींबू पानी पिलायो गयो। बालोतरा रा जसोल माए प्रभात फेरी निकालर जागरूकता बढ़ाई जी। इन तरह पाली रे तखतगढ़ माए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गंगा जल रो पूजन कर आमजन ने शपथ दिलाई। करोली रा पांचना बांध माथे राखी जा कार्यक्रम माए जनप्रतिनिधिया रे साथ आमजन ने पौधारोपण और जल पूजन करो। शिरोई सु माणा खबर नबीस बतायो कि वठे मुख्यमंत्री कार्यालय सु पहुंची टीम अभियान री प्रगति री समीक्षा करी।
2: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान जल शपथ वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग MPT रिचार्ज साफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल आकाशवाणी समाचार सिरोही।
1: जोधपुर री बड़ली ग्राम पंचायत में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जिला अहलकारा रे साथ है बड़ली भैरूजी तालाब माथे श्रमदान कर आमजन सु सहभागिता निभाने रो हेलो करयो। अभियान रे तहत काले जिला माए कृषि संगोष्ठी वेला और नवाचार प्रदर्शनी लगाई जावेली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जा रियो है। ओ दिन तंबाकू रे उपयोग ने समाप्त करने रे लखस सु विश्व स्वास्थ्य संगठन कानी सु शुरू करी जी महती वैश्विक पहल रो हिस्सो है। इन बरस रो विषय अपील का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना राख्यो गयो है। इन मौके माते प्रदेश भर माए भी न्यारा न्यारा जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। और अबे मौसम प्रदेश रा कई हिस्सा माए लाडला दो दिना सु बण्योड़ो आंधी बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो। हालांकि कुछ एक जगह माथे आज भी धूलभरी आंधी रे साथ है बिरखारी गतिविधियां दर्ज करी जी। मौसम महकमो पश्चिमी जिला माए तेज हवावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां चालने और न्यारी न्यारी जगावा माते बरसात रे साथ है ओला पड़ने री चेतावनी जारी करी है महकमा बीकानेर फलोदी जोधपुर नागौर और डीडवाना कुचामन रे खातिर आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट वठिने जैसलमेर श्रीगंगानगर चूरू अजमेर और राजधानी जयपुर रे खातिर येलो अलर्ट बतायो है मौसम केंद्र जयपुर पश्चिमी

0: विक्षोभ रे असर सु आज बीकानेर जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा जोधपुर और उदयपुर संभागरा कुछ एक थोड़ा माए तेज बादल गरजने रे साथ है धूल भरी आंधी चालने री आस जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट रा 19वां सीजन रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस रे बीचे खेलो जावेला। अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम माथे सिंजा 7:30 बजे सु शुरू वेला। इन सीजन माए दोनों टीमा चौथी बार एक दूजे रे सामने वेला। पहले तीन मैचा माए आरसीबी 2 माए और गुजरात टाइटंस 1 माए जीत हासिल करी ही। दोनों ही टीमा लीग मुकाबले माए नौ नौ जीत दर्ज करी ही और बरोबर अंक हासिल करया हा। ध्यान जोग है कि राजस्थान रॉयल्स सीजन माए चोखो प्रदर्शन करता हुआ प्ले ऑफ ताइरो सफर तय करयो हो। इन खिताबी मुकाबले ने लेर क्रिकेट प्रेमिया माए रोमांच बनियोड़ो है। और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों सु चोखे काम सु जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करियो। आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करिया। उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सु देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस रे बीच वेली खिताबी भिड़ंत। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो मणो। आगलो समाचार बुलेटिन काले सुवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये एसएमएस स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
9: आकाशवाणी जयपुर अजमेर
10: एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनला सारा हेतुला किसान मैन भाई ने भाई अरविंद
1: और भाई देवक कनिसु मोकला मोकला राम राम राम राम अरविंद भाई राम राम
0: राम राम किसान भाया राम राम।
1: तो अरविंद भाई बारे आपनो जको उनालो को भगत है एक महीने अचानक सु मौसम है ने वो करवट बदल ली और करवट यहाँ बदली के कई ठोड़ तो आंधी जोर की आ रही है और कई जगह काली पीली आ रही है और कई जगह गो टूटे हैं जो कटे तो कोई पेड़ तोड़ दियो और कटे कोई पौधो और कटे कोई छान छप्पर है कटे मान लियो अपने खेतों की सुरक्षा में आप बाढ़ जगी बना रहा कि बह भी उड़ाई है कई जगह बिजली का तार ही खंबा ही बह भी टूट रहे हैं। तो बाहर जो मौसम है ना कई जगह ओला भी पड़ा और कई जगह बिरखा भी ठीक ठाक हुई है कई ठोड़ है बा बिरखा है अरविंद भाई बा अड़सार भी हुई है और मोटी बात रही तो आप कहेंगे कि भाई मौसम है वो तो कभी बदल सके अभी भी को तो की ठा

0: लगे को नहीं। और आजकल तो आपनो जो को मौसम जो को विभाग है ने वो जरूर नबज पकड़ी है, जब बतावे ने भी ज्यादा हेरफेर होवे को नहीं है, क्योंकि आपनो जो को मौसम विभाग है भारत को जो को घोषणा करे कि भाई आंधी आवेगी तो आंधी आवे है, बिरखा आवेगी तो भी टाइम बिरखा आवे, कम बेसी को थोड़ो बहुत इन भिन्न को मामूली फर्क हो जाए, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी बार अपनी सटीक जारी ही तो बन सुन की अपन अंदाजो लगाना है। बात रही अपा आकर के कई ठोट बिरखा अड़सार हुई है, तो जटे अड़सार बिरखा हुई है ने बटे की है कि अरविंद भाई आपना जिका किसान बहन भाई ने बन मान लियो जेठली जी की बाजरी है ने आ तो देखो देसी बाजरी बाहर लेनी चाहिए
1: भाई, जटे चौकी अड़सार छांटो छिड़को पांती आ गयो बीजा है जो भाई बात करा आप गैलड़े दो चार दिन की, तो शुक्रवार ने है जो अड़सोतिया अपने किसान बहन भाई जिका जटे चौक छांटो छिड़को हो 15-15 आंगल में 10-10 आंगल में बीजा के आगामी जिकी है एक दो दिन की जिकी ने बारिश की संभावना। आजकल जिया थे बात करी के मौसम विभाग को जो पूर्वानुमान जो है ने भी उनके का अपना किसान बहन भाई भी अच्छी तरीके उन जानकार हो वाला गया।
0: बिल्कुल
1: भाई पुराने टाइम में तो के अपना जगह बडेरा ने इतना पढ़े लिखे को नहीं, लेकिन अबार अपना जगह घनकरा किसान बहन भाई ने वे के पढ़े लिखे ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और घनकरा किसान बहन भाई जिका जगह बडोड़ा स्मार्टफोन ही ने रखे लग गया।
0: बिल्कुल
1: तो अंक महीने आगामी 5-7 दिन को जो को मौसम है ने बोर बिंग माइन कोई है जो को भी आंधी उल्टा टेक छाटो छिड़को होने की जिकी संभावना हो कितने परसेंट हो कदो उसके और कई बजे अगर जे कल होने की संभावना है सपोज तो कई बजे छाटो छिड़को होने की संभावना है बाकी एक, एक पूर्वानुमानित बेरो पड़ जाए तो किसान मैन भाई जिका पहली पोत छांटो छिड़को चौक हो गयो जदा देखियो के एक दो दिन के महीने और छांटो छिड़को सी जिको लियो बाइंता तो करो।
0: बिल्कुल
1: तो सोतियो है जिको किसान मैन भाया जटे चौकी बारिश होड़ी है बटे देसी बाजरी को कर लियो।
0: बिल्कुल
1: और भी के बाद में भी कई जगह के काल भी हो और कई जगह चौखा ओला भी पंती है।
0: बिल्कुल
1: तो भाई ओ जको बदल तो मौसम है इंगे मैं देखो के कद आंधी आ जार कद ओला काकड़ा आ जार कद है जको छांटो छिड़को जा बेरो को नहीं।
0: भाई अरविंद भाई की है के मौसम तो दिन में कई बार बदले हैं, क्योंकि मौसम को कोई मान लियो बदल तो रहे और ई बदलते मौसम के मायने आपा ने भी की है के जकी मौसम के बदलाव की जकी ख्यात होने के भाई आंधी आ रही है तो अपन की करनो है क्या को क्या को अपन खेती बाड़ी में या घर गृहस्थी में या पशुधन को की जाप तो करनो है, तावड़ो पड़ रही है तो अपन की जाप तो करनो है। तो मौसम के अनुसार जो मान लो पहले जो मौसम को पूर्वानुमान है अपना जिका मौसम का जगह वैज्ञानिक ही अपन बतावे बे पूर्वानुमान व्यक्त करें तो भी अनुसार अपना जगह किसान बहन भाई ही भी ने सुनकी देखो काम भी करें भी बेटे और भी ने सुनकी भी हिसाब मुझे को चाल सी ने वो देखो अरविंद भाई नुकसान भी बच जाए है। तो अपा गढ़न गढ़े की थोड़ी बहुत ख्यात जरूर राख सका अपनी तो बा अपन राखनी है और बार को जो टेम है भी कमाई ने खेती बाड़ी कमाई दो भाई अब अपन खेत तैयार करना है, क्योंकि भी यहाँ देखा जब धीरे धीरे की है कि मानसून पूर्व की जी की बरसात आई वह शुरू होंगी तो भी के बाद में आप अपनों खेती बाड़ी को ज्यादातर आपने की है कि अरविंद भाई मानसून पूर्व की जी की बरसात ही ने भी आप खेत है वह बालिया, क्योंकि मानसून थोड़ो सो आपने लेट पुगे जो पहले पूर्व मानसून में आप बालिया तो भी पूर्व मानसून में आप खेत तो जदि बास का गाने जो कि पूर्व मानसून की बरसात होगी भी जब आपनों खेत तैयार करेड़ो होगो तो अपना जगह किसान बहन भाई ही बे देखो घनकराक तो लाग रहा ही दिन के जाए ही खेत के महीने क्योंकि तावड़ियों मोकलो जाए बाद में दो पारी में दो तो बे खेत तैयार कर रहा है कि और जगह नहीं कर रहा कि बे कि है कि वो जो डाली काट की सीऊ सिपाड़ो है वो रहे अपने खेत में जहाँ रूम खड़ा हुए बे निचन छड़ी लटकेड़ी हुए मगी तो कि हड़ बावा जब दिक्कत हुए तो छांग की बन ठीक
1: चौको सूड कर ली चौको खेत के मैं जिकी पहली उंज की खाद के रेडी है ने बिन चौकी तरिया सीधी साधी और भी के संग संग देखो के अपना जगह किसान मैन भाई ने बे के खेत की जमीन अच्छी तरीके जो को किसान हो वो आपकी जमीन वाकिफ हो।
0: बिल्कुल
1: तो बन चौकी त्रिया बेरो है के कठा उडार की जगह है बी जगह गए।

0: मैंने खेता के मैंने जगह मिलडा हुए बाकी लकड़ी भी साइड ही रखे तो बन भी है जो व्यवस्थित तरीका कर ली ने एक जगह है जो आपको मिल्डो लगा ली या घरांज की लानी बड़ो की लिया में तो खेती को जो काम है वो काम भी के खेती को ही काम है तो वो भी है जो अपना किसान मैन भाई के अबार को जो मौसम है ने इनके मायने दिन के आथन के जद जद ठंडो है चोखो मौको मिले ने भी अनुसार है जो अपना किसान मैन भाई वो खेती को काम भी करता रहे सग सगे और देखो सग सगे बीच के मैन कई बार के तावड़ो इश्यो भी पड़े के दिन के पहले है जो 8-8:30 बजे तपड़ लग जाए
1: बिल्कुल तपड़
0: तो भी कमाइन भी है जो ध्यान रखना पड़े के भाई कटे लू के चपेट के मैं नहीं आ जावा तावड़े के मैंने एकदम हुमस हो भी के मैंने है जो आप कटे चपेट में नहीं आ जावा अगर जे चपेट में आ गया तो 10-15 दिन की गई
1: भाई अरविंद भाई क्या कह रहे हैं के पहलो सुख निरोगी काया काया को अपन ध्यान रखना पड़े और सावधानी की बात करा तो भाई कहीं ही के सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो सावधानी तो अपन रखनी है सावाचेती अपन रखनी है कोई भी काम हो अरविंद भाई सावाचेती के सागे करांगा ने जद की है के अपना भी काम ने भी सही तरीके कर पाऊंगा और आपनो जो को शरीर है आपनो स्वास्थ्य है वो भी देखो भी की भी ध्यान रहेगी जदि काम चलेगो और बात भी आप कर यार पर आज देखो अरविंद भाई 31 मई है और 31 महीने की है कि आपनी पूरी दुनिया का महीने और एक ठावरो सो दिवस है वो मनाया जाए और वो दिवस है विश्व तंबाकू निषेध दिवस भाई नाम में ही छुपेड़ो है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस है निषेध यानी रोकनो भी नहीं है तो कहने को मतलब वो है कि भाई पूरे विश्व के महीने आज तंबाकू ने बिका कभी तंबाकू को प्रयोग है वो अपन नहीं करना है और भी ने बिका नुकसान ही बांके बारे में लोगों ने जागरूक कर रहे हैं तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने को वही कारण है कि भाई तंबाकू है ने बा कटे ही अपन फायदो गुंदे क्योंकि तंबाकू है भी ने आप मान लो चाहिए बा तंबाकू चाहे कोई बिया खाओ आप आजकल के भात भात का है चल रहे हैं गुटका बम भी तंबाकू आवे और कई लोग के तमाकूर वो चुन्नो और मिला की खाई कई और मतलब खाने का तो कई मतलब बहुत सारा तरीका ही अलग अलग है और कई के चिलम में मान लो तमाकू पीवे कोई मान लो बीड़ी सिगरेट के माध्यम तमाकू को सेवन करे तो भांत भांत का तमाकू का सेवन करने का जगह तरीका ही नहीं वे चाल रहे ही पर अपनो मतलब वही है कि भाई जिकी तम्बाकू है ना भी आपने दूरी बनानी है क्योंकि एक पहली बात तो आई है के भाई तंबाकू जद जको भी कोई मिनक है वो भी ने पीवेगो भी को सेवन करेगो भी ने खावेगो की भी रूप में भी के शरीर में जागी ने जद बा भी शरीर के महीने भांत भांत का जगह रोग ही पे पैदा करेगी और आपने जे देश में बात कराने तो हर साल देखो तंबाकू कई प्रकार की जगह बीमारियां हुए और भी तंबाकू खाना और भी तंबाकू को सेवन करना बहुत से लोगों की मौत भी हुए तो यहाँ की जकी चीज है जकी ने मान लियो भाई तंबाकू है भी आपा मान लियो वो बीमारी ग्रसित हुआ आपा मान लियो बीमार हो जावा तंबाकू खा की और फिर मान लियो अपना जहाँ मान लियो बीड़ी सिगरेट पी तंबाकू आपा पी तो भी आपनो फेफड़ा में धुओं जागो और आदमी के मिनक में क्यों है कि अरविंद भाई फेफड़ा है ना वह बहुत जोर की चीज है क्योंकि आपनो जो सांस लेने को जो काम है वो फेफड़ा में हुए और धुओं सीधो अपने फेफड़ा ने जाके प्रभावित करे फेफड़ा ने वो एकदम गड़ा दे वो एकदम काला करके माने मान लियो खराब कर दे और फिर मान लियो जका आदमी तंबाकू पीवे कई आप देखा भी यहाँ गाँव के मायने कई तंबाकू की जगह लत पड़ेड़ी हुए अबा के मान लियो तंबाकू पीता पीता धीरे धीरे मान लियो कहेंगे तो जवानी में सांस उठन लग जाए क्योंकि फेफड़ा काम करना बंद कर दे फिर तंबाकू कई बात का जगह मोटा रोग ही वे भी हुए जिया मान लो कैंसर जिया की बीमारियां ही वे भी देखो तंबाकू को सेवन करना हुए कई लोगों का आप देखा के आप जब सरकारी अस्पताल का मैं जावा तो बैठे देखो जागरूकता के लिए दीवारा के ऊपर मान लो बे तंबाकू खाने वाला का अरबा का चित्र लगाएड़ा हुए अरबा का बीमारी हो रही हुए बंका भी चित्र लगाएड़ा हुए जबकि एक आप देखा ने भाई चित्र ने देख की अरविंद भाई डरसो लगे है के भाई देखो तंबाकू कहें तो यहाँ हो गए हैं पर आप आई कहना चाहूंगा कि भाई तंबाकू स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य भी खराब हो है और तंबाकू आपने मान लियो शरीर में कटे कोई नफो भी गुन करे है और तंबाकू आपने की है कि आर्थिक जो को नुकसान है ना वो भी मोकलो हुए अब मान लो एक आदमी कई कई

0: आदमी तो इतना नशेड़ी हो जाए कि दो दो बंडल फूंक दे, कई मान लो सिगरेट की एक एक दो दो तीन तीन डब्बी पी जा, और कई मान लो चिलम पीवे जगह मान लो दो चार दिन कमाई नहीं किलो मान लो तंबाकू है भी गए, सारे दिन हुक्के गए चिलम के लागे रहे, हाथ मांगा देखो पीड़ा होया रहे, मुछा रखे ने भाई मुछा कई लागे जानी मंदी लगा रखी है कि भाई भी चिलम वाले धुआं देखो मूछिया की हो जाए कुंकिया की हो जाए कल्ड कावरी कोजी कोजी जब बारे आपने मूछ है बाबी धुआं इतनी कोजी काली पीली हो जाए तो आपने अंदर को जो शरीर है वो कितो नाजुक है महीनू है और बिम्बो आपा सीधो धुआं मारा वो तातो तातो है चिलमा को बीड़ी सिगरेट को या मान लो और कोई तरीकों जी अभी तंबाकू है भी को चाहे तो वो आपने अंदर कितो नुकसान करते हो गयो
1: भाई। तंबाकू है जो कि आपने शरीर के लिए हानिकारक ही है, चाहे कोई रूप के मायन हो, चाहे बा बीड़ी सिगरेट के रूप में हो, चाहे चिलम के रूप में हो, चाहे गुटका या जर्दो और कोई जो की चीज है बी के रूप के मायन हो, और बा धीरे धीरे के आपने शरीर की जो की रोग प्रतिरोधक क्षमता हुए ने बिन भी कमजोर करती जाए,
0: बिल्कुल करे, बिल्कुल
1: और आपने आ चीजा बचनो चाहे और दूसरी आ चीजा की जिके एक बार जिकी लत लाग जाए ने बाकी का छुटनी महाभारत हो जाए
0: मुश्किल हो जाए।
1: आपा देखा के बूढ़ा बडेरा ही जिका उको या चिलम पियो है तो बे चाहे घरा बैठा ही तो भी टाइम होगो तो बे उको चिलम भरे बिना कौन माने,
0: बिल्कुल,
1: और जे बे खेत के माइन भी गेड़ा ही तो भी भाई कोई जरूरी काम हो चाहे ब्याह सावम कठे बैठे हो बे के बात चीज है जो की ली और आई चीज है जो को के गुटका जर्दो बंपर हुआ है तो आपने इन चीजों बचनो चाहे आ आपने शरीर के लिए हानिकारक है और यू जान बिना का जो रोग ही नहीं बहु आपनो शरीर है जो को गिर जाए,
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई कहने को मतलब वो ही है के नसो है अरविंद भाई। अभी आप तम्बाकू की बात कर रहे हैं अपन नशो चाहे की हो है चाहे वो कोई रूप में हो कोई प्रकार को नशो हो वो के मिनक के स्वास्थ्य ने खराब करे, मिनक ने मान लो आर्थिक रूपों भी कमजोर करे और मिनक ने सामाजिक रूपों भी कमजोर करे। आप देखा के कई बार मान लो मोटा नशा करने वाला जगह मिनक हुए बांका घर का टाबर टिकर हुए ने बांका घर का लोग भी बांकी इज्जत कौन करें कहने को मतलब मान प्रतिष्ठा है भी कमाई ने भी मान लो कमी हुए तो आपनी सरकार है ने बाबी कई प्रकार का देखो देखा ना पा के भाई जा रेडियो के ऊपर टेलीविजन पर अखबार के माध्यम या जगह अस्पताल का अपना जगह सफा खाना ही अस्पताल ही बंक के मायने भी मान लो जगह पोस्टर चिपका की या गाँव का मायने भी आगे ऊपर जगह मान लो गोष्ठी संगोष्ठी आयोजित करकी ओ सीख देनो चाहे जागरूकता पैदा करनो चाहे के भई विश्व के मायने कठे भी तंबाकू है ने भी को सेवन नहीं करे जा तो इके लिए जागरूकता मान लो फैलान लाग रहे हैं
1: भई आपनो जो को स्वास्थ्य विभाग है ने वो भी के जागरूकता पखवाड़ो और अलग अलग है जो को कोई सेमिनार है या कोई और व्याख्यान है और बहु के तरीके आप बच सका बह के लिए और बहु होने वाली जी की क्या नहीं बंक प्रति आपने जागरूक है जो को करता रहे और आपा देखा के स्वास्थ्य विभाग वाला ही जिका के जागरूकता पखवाड़ो मना में तो भी के बचाव के लिए भी होने वाली हानि के लिए आपना जगह टाबर ही जिका भी कोई निबंध प्रतियोगिता करावे या और कोई है जो को कार्यक्रम करावे तो वह बच्चा ने और बच्चा के मार्फत आपन लोगों ने एक संदेश देनो चाहे कि आपने तंबाकू और तंबाकू जिका जुड़े जिकी चीजा ही ने बंगी लतू आपने बचनो चाहे और एक आपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो और भी के सगे सगे आपने जिके शरीर के माइंड की जिकी ताकत है ने बिन भी है धीरे धीरे कमजोर करे
0: भाई। अरविंद भाई आप देखा के गाँव के महीने और शहरा में कठे भी देख लियो दीवारा पर भी की है के नशे के निषेध का जगह स्लोगन ही लिखेड़ा हुए बाऊ भी की है के पढ़ो लिखो आदमी है वो पढ़ की सीख ले ले है और भी के सागे की है के सरकार एक आदेश पहली तो की हो के नशे पर की या को लिखेड़ो को नहीं होया कर तो पर फिर आपनी जी की सरकार ही बे भी के ऊपर देखो अब अब जी मान लो कोई भी थे गुटको खरीदोगा, कोई जर्दो खरीदोगा, कोई तंबाकू खरीदोगा, बीड़ी को बंडल या सिगरेट को पके

का मक्खी भी खरीदा बी के ऊपर देखो एक तो चेतावनी लिखेड़ी हुए फिर भी ऊपर देखो एक फोटो देड़ी हुए भी फोटो ना पा देखा ने तो यहाँ लगे बापू के भी फोटो ही वास्ते देड़ी हुए गए ई चीज ने थे मान लो प्रयोग करोगा पियोगा तो थारी भी हालत इसी हो जाएगी गे है। तो सरकार तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि भाई अपना जगह मिनक ही जगह मान लो तम्बाकू है भी मान लो भी को नशो है वो नहीं करे और आपा भी अपना रेडियो के माध्यम अपना सुन वाला जितना भी किसान बहन भाई ही तुला अपना स्रोता ही मन से ना आई कहना चाहूंगा कि भाई नशो है ना वो नाश को द्वार है नशो मान लो करना कोई फायदों को नहीं। तो आपा ने की है कि आज मान लो 31 मई है और विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है तो अरविंद भाई आपा अपना जगह है तुला किसान बहन भाई ही अपना हितुला स्रोता ही बना आ कहना चाहूंगा कि भाई जको आदमी नशो कर रही है ना वो आज आ शपथ जरूर ले ले कि भाई आज के बाद मैं तंबाकू को सेवन कदे नहीं करूंगा है। तो यदि आपनो मान लियो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनानो सार्थक हुए क्योंकि नशो आपने शरीर के सागे अर्थ की भी आपने समस्या हुए मानसिक परेशानी भी हुए और कई प्रकार का नुकसान ही नशो हुए तो अपन नशो बचनो है और बतलावन तो कि अरविंद भाई आपनी जारी रही सी पर बीच में आप एक लोक रचना है वह अपना जगह किसान बहन भाई मन सुना दिया तो सुनो सा नशो जुड़ेड़ी एक लोक रचना है।

0: जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
3: तो किसान बहन भाई, आप भी संतरा सा संदेश सुने यार। संदेश सुन पहली आप एक लोक रचना सुनी, मत पियो सा छेले तंबाखुड़ी। तो एक मायने की है के गायिका है बा भी मान लियो कह रही है, जे मान लियो धन है बा आपके धनी ने कहनी कह रही है कि भाई तंबाकू है बा कौन पीनी, और बा भात भात का देखो भी कमाईने करकी मान लियो, और अंत के मायने भी ने राजी करे कि भाई तंबाकू नहीं पीनी है क्योंकि तंबाकू है बा स्वास्थ्य के लिहाज उनकी है के खराब होए। कह अभी करें अनविंद भाई के तंबाकू गुटका पान से होता है नुकसान, तंबाकू गुटका पान से होता है नुकसान, मुंह में होता कैंसर है और जाती है जान है। तो भाई कहने को मतलब वही है कि भी नशो है ने वो कटाई मान लियो आपने मिनट के लिए चोखो को नहीं भी की कटाई कोई श्रावणा को नहीं करे जा सके। तो अपन की है कि जो तंबाकू है या और भी कोई भात का नशा ही बहु अपने बचनो ही चाहिए, बचाव ही उपाय है। तो निरोग रहनो है, स्वस्थ रहनो है, तो अपन इको मान लियो तंबाकू को तो बिल्कुल ही मान लियो आज ही शपथ ले लेनी है। और आप बात लिए आगे बढ़ावा तो आप बावना मान लियो अपनी खेती बाड़ी करनी, और खेती बाड़ी के मायने की है अरविंद भाई बार जो मान लियो कई जगह अपने क्षेत्र की जो आप बात कराने तो अठे आपनों जो जमीन को जो पानी है ना अरविंद भाई वो की है के भी कमाई थोड़ी लवण की मात्रा है, नमक की मात्रा है, और कई बात का मान लो जगह लवण ही बे कमाई ज्यादा ही फ्लोराइड भी है। तो भी की है के आप अपने खेत में जद मान लो जो खारे टाइप को थोड़ा पानी है ना वो दया जद अपनी माटी की जी गुणवत्ता है ना बा कम हो जाए।
4: वही क्यों तो आपनो जो खारियो जो पानी है ना इंग मैं देखो के लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है, और आप देखा के खारो पानी अगर जी आप अपने खेतों का मैंने सिंचाई के मैंने काम में लिया तो खेतों का मैंने किया माटी का ऊपर ऊपर है ना दोलपनो या जम जाए, और भी दोलपने के मैंने अगर जी आप चला तो देखो के खरड़ खरड़ की जी की आवाज है ना बानी चालू हो जाए
3: बिल्कुल।
4: और लंबे टाइम तानी अगर जे वो बीसो पानी आप सिंचाई के रूप के मैं काम में लिया तो देखो के अपना जो खेतों की जो माटी है ना वह भी उतर जाए, और भी खारी है पानी के सग सग है। दूसरी आप बात करा के आजकल के बिचलो जो थोड़ा दिन पहले को जो टाइम होने भी टाइम के मैंने अपना जगह किसान मैडम भाई जगह देखू देख और उड़ा उड़े जान भी ना गा रासायनिक छिड़के लग गया
3: बिल्कुल, रासायनिक खाद खूब छिड़के, रासायनिक कीटनाशक को भी प्रयोग ज्यादा करे लग गया।
4: तो वो जो रासायनिक तत्व है ने भी के कारण भी अपनी जी खेत की जी माटी है ने बा धीरे धीरे के बंजर हो लगी
3: बिल्कुल, भी खेत की माटी एकदम कल्डी हो लगी। हाँ,
4: और बा खेत की माटी इतनी कल्डी हो लगी कभी ने के मायने अगर जे आप डिस्क की पाड़ भी कटा लिया और फिर अगर जे कोई आंगल दो आंगल छांटो छिड़को हुए तो भी देखो ऊपर की जी की माटी की जी की परत है ने बाई तरीके की हो जा एक अलग ही आवरण सो आ जा अभी के ऊपर, और भी के ऊपर अगर जे आप चाला या भी माटी कुचरा ने जी आप खाडो खोदा भी ऊपर ऊपर की माटी ने हटाने की कोशिश कराने तो देखो के बिंग मायने या आवाज आवे खरड़ खरड़ की, और वो संकेत है अपनी खेत की माटी

0: धीरे धीरे के बा अपनी खेत की जिकी माटी है जिकी की उरुरा शक्ति है जिकी एकदम कमजोर हो जाए और आ सिचुएशन हो जाए कई जगह तो आप देखा के खेत के मायने चोखो मेबर शेड हो बी के बावजूद भी अगर जी आप कोई नाज बावा ने तो वो नाज उगने हो रह जाए और जे नाज उगे तो बस वो उगकी रह जाए बढ़वार होना हो रह जाए
1: वो पीड़ो हेड़ो सोर वो बठे ही खड़ो रह जाए
0: बठे ही रह जाए। और बाकी दूसरे खेतों की बात करा तो बांगे मैं इनके एक नाज बड़ो बड़ो जा लेकिन बम वो बठे ही है जो को दो पत्ता को ही खेल बो करे तो आ जका संकेत ही जका के का अपनी खेत की जकी माटी है ने बिन कमजोर होने का ही और भाई गलती होगी और भी वो पछतावो जद कर ले बिम सुधार जद करे ने तो देखो बिम अर्ज भी को नहीं हुआ
1: बिल्कुल बिल्कुल सुधार तो करना जरूरी है।
0: आपा ने जी आप अपनी बात करी के भाई शुरुआत के महीने आज के करिए कर्म के महीने का आपा ने अगर जे कोई आदमी तंबाकू को सेवन करे तो आपा ने भी बचनो चाहे भी दूरी है जकी अना लेनी चाहे
1: बिल्कुल
0: भी है आपा ने अपनी जकी खेत की जकी माटी है ना भी के महीने अगर जे कोई तरीके को रासायनिक तत्व है या कोई छिड़काव है कोई भी या फिर खेत की माटी के महीने नाज उगण रह जा तो देखो के बिंग के मायने सुधार तो आपा नहीं करनो पड़सी
1: बिल्कुल
0: आपा आपने खेत के मायने चौकी जकी देसी खाद जकी होवे ने भरपूर मात्रा के मायने तो बाद दिया और भी के सग सगे आपा आपने खेत की माटी के मायने देखो जिप्सम जकी है ने बिको छिड़काव करकी और वो खारो पानी जको केमिकल जकी अपनी खेत की जकी माटी की जकी उर्वरा शक्ति घटे ने बिन आपा उठी धीरे धीरे बना की और आपा अपने खेत की माटी है जकी ने सुधार कर सका।
1: बिल्कुल अरविंद भाई की एक जिप्सम है ने वो एक प्राकृतिक खनिज है और एक मायने जा मान लो कैल्शियम और सल्फर है ने इको बहुत ही बढ़िया स्रोत है और आपनी जकी फसल है ने बन मान लो कैल्शियम की और सल्फर की ज्यादा जरूरी भी होए और ई जित मान लो जिप्सम को आप प्रयोग करांगा ने तो आपने जकी माटी की जकी भौतिक संरचना है ने बा देखो बहुत ही बढ़िया हो जाए और जका रासायनिक थे बात करी अभी जका रासायनिक खाद की या रासायनिक कीट जका नाशक आप छिड़का बाऊ जमीन खराब हो ने बिन भी वो सुधार की है माटी की जकी गुणवत्ता है बिन बहुत बढ़िया कर दे। और जिप्सम जब आप मान लो खेत में आपने ध्यान आने तो ब्यू की है कि आपने जकी फसल ही ने बाकी जड़ा है बे गहराई तक जाएंगी फसलों की बढ़वार बढ़िया होगी और फसलों को जो को पोषण है ने वो बहुत ही बढ़िया होगा।
0: भाई जिप्सम का मायने सहूं ज्यादा प्राकृतिक रूप में देखे जा तो आज की आप आपने खेत भई गरांग है जकी मकाना के जकी कली कराने ई कली के बाद में सेनो ज्यादा और जिप्सम के मायने कैल्शियम हो है
1: बिल्कुल
0: और कैल्शियम है जको के मिनख जमारो चाहे पशु धन हो और चाहे है जको भई पेड़ पौधा हो और चाहे फसल हो सके लिए के बहुत ज्यादा गुणकारी हो है। आपा देखा के आपा रखा पशुधन किसान ठहरिया तो पशुधन रखा पशुधन आजकल ब्यावर ब्यांता ही है जो पशु चिकित्सक देख की और एक पर्ची मांड की दे दे के पशुआ खातर कैल्शियम ले ओ और आपा चूरू आवार एक बरनी है जो 5 किलो की आवे बा लेकी जावार बा है जो बांटे के सगे आपा अपने पशुधन ने दिया और बिंगो है जो दूध बढ़ जा और बाई चीज है जो की आपने पेड़ पौधा के मायने के जगह पेड़ पौधा के मायने आप देखांगे चोखा पेड़ पौधा दिखने में चोखा ही हरिया खड़े ही एकदम चटचटी करे लेकिन बांगे फल कोन लागे तो बांग के लिए भी कैल्शियम में है जिको की कमी हो है तो बा भी पूर्ति करा तो जानमिना का फल ही जिका लग सके और वही चीज अपने खेत की जिकी माटी है ने बी के मायने अजीब से मैं जिकी सऊ ज्यादा कैल्शियम की पूर्ति करे।
1: भाई अरविंद भाई जिप्सम है ने वो की है के मिट्टी है ना अपने खेत की जिकी मृदा है जिकी माटी है ने बी के मायने की है के वो आराम घुल जाए और घुलने के बाद में की है के जमीन के मायने जिको कैल्शियम की मात्रा है वह बढ़ा दे है सल्फर की मात्रा बढ़ा दे है तो बी की है के पौधा को पोषण है वो बहुत ही बढ़िया हो जाए, फसलों की बढ़वार है।

0: बढ़िया हुए। और एक आगे की है कि फसल आप बात करिए या जड़ जमाव है वो बढ़िया हो जा, फसल की बढ़वार अच्छी हो जा। और पशुओं आप देखा फसलों में कई बार की हुए कि जी हाँ फल फाल कम आवे ने वो भी जिप्सम की कमी हो आवे, तो आप अगर जिप्सम की खेता में कमी है तो भी मापा देंगे तो अपनी जी की फसल ही ने बागा मई ने जो फूल और फल लागने की जी है ने बा मतलब ग्रोथ है वह बढ़िया हो जाएगी, बढ़वार भी और वो बढ़िया होगा। बीके सागे
1: बीके सागे सागे भाई जिप्सम है जो अपनी माटी जी की है ने बिंगोकन के मोटो है
0: बिल्कुल,
1: और बिंक मैंने किया है ज्यादा पानी सोचने की क्षमता को नहीं हुआ है, थोड़ा सो मैं बरसी और मैं बरसता के सगे के पानी है जो को डाल का नहीं चल पड़े वो के पानी ने बड़ी देर तनी सोचा कौन रख सके। और जिप्सम अगर जे आप अपने खेत की माटी के मैंने छिड़काव करा और बिन में पाड़ के कराकी और चौखी तरिया रवा करके भी मैं माटी मिला दिया तो बाकी का आपने जिकी खेत की जिकी माटी है ने बी के मायने जल सोसने की जिकी क्षमता है ने बिन भी बढ़ावा है, तो लंबे टाइम तानी वो जो को मे बरसेड़ो है बिंगो पानी है जो को सोसेड़ो है तो वही वो है जो को आपने खेत की चाहे पेड़ पौधा में चाहे अपनी फसल हो है बिन लंबे टाइम तानी मिलतो रहे तो बाकी का सके लिए लाभकारी होवे।
0: भाई आप अभी बात करी के जिप्सम है वो मान लो आपने खेत की जिकी लवणीयता है खारापन है बिन दूर करे बीके सागे सागे की है कि अरविंद भाई एक जिप्सम है वो आपने मान लो जो की एल्यूमिनियम की जिकी विषाक्तता है ना आपने जमीन के महीने माटी के महीने खेत में तो बिन अभी वो कम करे क्योंकि आपना जगह जिया पौधा हुए ना फसल का पौधा मान लो तो बाकी जिकी जड़ हुए ने बाकी नेड़े नेड़े बाकी आसे पासे की है कि एल्यूमिनियम की विषाक्तता हुए ने बहुत ज्यादा हुए आमतौर पर देखा बा तो ब्यू की है कि जिकी मिट्टी है वह 4.5 को जो पांच कम जो पीएच है ने बाबिया की माटी हो तो बिम जो एल्यूमिनियम माटी को जो घोल होवे भी वो गुलेड़ो हो जा पौधा की जड़ा के कन कने तो आप अगर खेत के महीने जिप्सम को छिड़काव कराना उचित मात्रा के महीने और अपना जगह पहलो काम तो ये है कि भाई माटी की जांच कराओ आप खेत की भाई आप खेत में कोई भी पोषक तत्व बुरा ने मतलब भी छिड़काव करा तो भी पहली की है कि आपने अपने ध्यान तो होना चाहिए कि भाई आपने खेत में कौन सा पोषक तत्व की मात्रा कितनी है। अब आपने अपने खेत में पहली हुई जिप्सम की मात्रा ठीक है तो फिर आपने जिप्सम गिरने की जरूरी को नहीं, तो आपने जितका भी पोषक तत्व दिया माटी की जांच करा की आपने की दिनो चीजें बाकी जिप्सम है ना वो आप मान लो जो कृषि का अपना जगह वैज्ञानिक ही आपने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना की दे भी की अनुशंसा के हिसाब में अपने खेत में की है कि बाकी मात्रा है वह आपने बढ़ानी चीजें। और जो जिप्सम तो बिया भी मान लो प्राकृतिक चीज है कोई नुकसान जो आपने खेत की माटी अभी नुकसान करेगा नहीं नुकसान की बजाय फायदा ही करे। और जो एक आप अभी बात करिए आके भाई जो चुन्नो है ने चुन्ने ना भी मतलब जो जिप्सम है वो कैल्शियम और जिकी सल्फर की मात्रा है वो भी चुन्ने के पानी ना भी या चुन्ने ना भी जल्दी मतलब वो माटी के मायने मान लो गोड़ दे और ए जगह तत्व ही कैल्शियम और सल्फर है ना खूब सारा बढ़ा दे भी उनकी है कि आपने खेत में पैदावार है वह बढ़िया हो जा खेत को उपजाऊपन है वो बढ़ जा। तो अरविंद भाई बात रही तो आपने जारी रहसी पर एक लोक भजन है वो और सुन लिया तो आपना जगह तुला किसान बहन भाई मैंने सुनावा वो सांतरो सो लोक भजन।

0: अभी अपन वो सांतरो सो लोक भजन है वो सुनियो, और आज के अगर अरविंद भाई पुण्य ही पुण्य पर थे, देखो कितो बढ़िया जो भजन है वो सालासर बालाजी को सुनायो, क्योंकि आपने क्षेत्र के महीने पुण्य पर सालासर बालाजी की तो मोगली मानता भी है, धोख भी लगे है, तो अपन बालाजी महाराज ने भी मना लिया, तो अपन पाछा ही अपनी खेती बाड़ी करनी और बावड़ा, तो खेती बाड़ी की बात नहीं है बा अपा करा, और आपने जकी खेती किसानी है ने अरविंद भाई, एक महीने जकी सूचना और संचार की जकी प्रौद्योगिकी है ने भी को भी आपना जगह किसान बहन भाई ने मन मोकलो लाभ मिली है
1: भाई। अब आ रहे देखो के आपना जगह किसान बहन भाई ने भाई गणकरा के गणकरा के सारा ही पढ़े लिखे है, और नई नई जकी तकनीकी आ रही है बम भी अच्छी तरीके वाकई पी, और भी के सागे सागे एक चीज और है के वो संचार को जो तंत्र है ने ब्यू के अपना जगह किसान बहन भाई इनका नई नई योजना का जानकार होगी, और देखो के आपने आस पास के खेतों के मायने अपना पड़ोसी खेतों के मायने और खूब नवाचार कर रहे हैं
0: बिल्कुल,
1: एक है वो जो को खेती का मैंने जो को संचार तंत्र है ने ब्यू गैलड़े 5-10 साल गए मैंने और देखने मिली है भाई, अलग अलग जिकी सरकार की जिकी योजना ही ने बंगो जो को प्रचार प्रसार है ने वो के संचार का माध्यम ही हुआ
0: है, और
1: अलग अलग जिका खेती का मैंने जिका नवाचार जिका अपना किसान मैंने भाई जिका कर रहे हैं बैक एक कठिन कठे संचार तंत्र जुड़की और बन अवाचार इंज का आसानी कर रहे हैं भाई, जिया आप बात करा के आपने पुराने टाइम के मैंने आज 15-20 साल पहले और दो फसल या एक फसल जिका कुओ या पानी की सिंचाई होती मैं दो फसल लेता नहीं एक फसल ही लेता, अब आर देखा का दूर दराज का जगह खेत ही जगह गांव तो दो तीन तीन कोस दूर ही भट्टा भी के सोलर प्लेट लगा के ट्यूबवेल करके आराम किसान मैन भाई जगह दोनों फसल ले ली बिंगे सागे सागे जगह फलदार पौधा ही जगह भी बारा खे और बंगे सागे सागे अबार कुछ को वक्त नहीं ई वक्त के मायने के खेत के मायने चौकी बाड़ी के मायने सब्जी भी शुद्ध की शुद्ध, और वह जिका नवाचार इन जिका के आप 5-10 साल में आपने देखने मिले पहली इता कुनिया
0: भाई अरविंद भाई जिके नवाचार की थी बात करी है ना बे नवाचार की है आपनो जो को कृषि विकास है ना भी खातर आपने जिकी सरकार है ना बा देखो सरकारी जिकी संस्था ही निजी जिकी संस्था ही स्वयं सेवी जिकी संस्था ही बाके सहयोगों और सगला मिलकी, और जो मान लो बिंक मैंने बात करा तो जो मान लो रेडियो है आकाशवाणी बी के ऊपर भी की है के खेती बाड़ी जुड़ी जी की बात ही खेती बाड़ी जुड़ी जगह नवाचार ही बंके बारे में जानकारी है बा अपना जगह किसान बहन भाई दूर दराज बैठे ही गाँव के महीने डाणिया के महीने खेतम कठे भी बैठे ही तो रेडियो की पूछ है बा सगले है तो,
1: रेडियो की है अखबार की और बी के सगे सगे आप जी आ चर्चा जिया चालू करी ने जिद करियो के अपना किसान बहन भाई इनका गणकरा के सगला ही पढ़े लिखे ही, और बे आजकल आलो जो को टच आलो जो को फोन आवे नहीं स्मार्टफोन इनका चौकी त्रियाओं जानकारी और भी फोन है जो को किसान कॉल सेंटर जो का है ने भी लगातार संपर्क राख की, और आपने दूर दराज खेतों के मायने डाणी के मायने बैठा किसान मैन भाई इंज का के फोन मिला कीर खेत के मायने आने वाली कोई भी समस्या जिकी

ने भी वो तुरंत आपकी भाषा के मायने और बात करके चौकी त्रिया मांगे भाई के सावधानी रखनी है इनके मायने।

0: भी कद बींगा मायने नान काटनो है, कद कद बींगा मायने सिंचाई करनी है, और के है जो मौसम के अनुरूप के सावधान रखनी है, बींगा बारे में अपना जिका बडेरा ने बेकुन जानता।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, अरविंद भाई की है के संचार को जो को सिस्टम है ने यूं की है के अपना जगह किसान बहन भाई भी बहुत लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि आज मान लो संचार का साधन हूँ पहली के हो तो के कटे मान लो दूर जो मान लो जो 50 कोस दूर भी आपको कोई तकनीक नहीं आती नहीं तो अपन भी को भेरो गुण पड़ते। अब की है के संचार का इतना साधन हो गया कि बहुत तुरंत अपन भेरो पड़े। अब जहाँ रेडियो के माध्यम तो आपा खाली सुना ही हाँ भाई, जकी बात कोई किसान वैज्ञानिक के सागे मान लो कोई कर रही है, कोई भेंट वार्ता कर रही है, कोई वार्ता सुना रही है, तो भाई आपा सुना खाली सुन की आपा मान लो भी को ज्ञान है वो ग्रहण करा, अपने खेत में काम में लिया, अपने जीवन में काम में लिया। भी के आगे जो मान लो टेलीविजन है तो टेलीविजन तो एक तो प्रभावी है कि भाई टेलीविजन के मायने जकी बतलावन जो कृषि वैज्ञानिक है जो कृषि भी के सामने आदमी बैठे भाई अपन दिख सी और भाई आपने बता सी अरबा के मायने तो की है कि जका किसान प्रगतिशील किसान जकी खेतियां कर रहे हैं बांका भी जका कार्यक्रम भी मायने चल रहे वो किया के कर रहे है, कितनी दवाई दे रहे है, कठो पौधा ले रहे है, के बीज उपयोग ले रहे है, के तकनीक काम में ले रही है, वह सारी अपन टेलीविजन के माध्यम अपने दिखे और वो करता भी दिखावा भी मायने। तो आपा बहु भी की है संचार क्रांति जी की है बा आपा मतलब भी मुंह देख की भी सीखा। अब की है आजकल अपनी जी की सरकार ई चौपाल भी मान लो जी की शुरू कर रहा की ई इंटरनेट के माध्यम तो भी हूं भी अपना जगह किसान बहन भाई बे लाभान्वित तो हुई। अभी आपा बात कर रहा किसान कॉल सेंटर की भी आपा बात कर रहा वो भी संचार के मायने जोर को काम है। अब भाई की है के इन तो की है के वो दिन के ही शुरू हो जा मान लो और रात में 10 बजे तक आप मान लो पर पूछ सका हाँ। और एक बात हो रही कि मोटी भाई सगले विभाग आपा देखा ने कोई न कोई दिन की छुट्टी रहे भाई, कोई कटे मान लो दीतवार की छुट्टी रहे, कटे कोई और कुरसे बार की छुट्टी रख ले है, पर किसान कॉल सेंटर ने वो 7 दिन तैयारी रहे है कि कोई छुट्टी को नहीं है और दिन के 6 बजे लेगी रात ना मान लो 10 बजे तक आप भी पर फोन कर सका और फोन भी निःशुल्क है। नंबर की जो आप बात करा 1800 180 1551 एज का नंबर ही आगे ऊपर मान लो आप कद भी फोन करके अपनी जानकारी है बालेस का हाँ। तो और भी जहाँ मान लो कॉमन सर्विस सेंटर ही बे चाल रहे हैं, कृषि मौसम सलाह सेवा केंद्र ही बे चाल रहे हैं या किसाना के लिए SMS की वॉइस मैसेज की सुविधा सरकार दे रखी है बेचाल नहीं। कहने को मतलब वो है कि अरविंद भाई बहुत सारा जगह संचार का साधन ही बाकी व्यवस्था तो किसाना के लिए अपनी जगह लोक कल्याणकारी सरकार ही ने बे करती आ रही।
0: और भी के सगे सगे आजकल घनकरा किसान मैन भाई जिका वो बड़ोड़ो फोन रखे लग गया और भाई कोई तरीके की खेती बाड़ी के मायने समस्या आवे तो भी वो संबंधित गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर है ने आपा जका प्रगतिशील जका किसान मैन भाई ही जका के तरीके उबा के ऊपर काम कर रहे हैं और बे देखो खेत के मायने है जो कोई सी फसल बावे कद बावे भी के मायने के सावधानी बरते हैं, पेड़ पौधा के बीच में कितनी दूरी रखें, हर चीज है जो की खेती के मायने और भी वीडियो के मायने के करता दिखावे करता दिखावे तो अपना जगह किसान मैन भाई ही जगह के भी ज्ञान लेके और देखो सकारात्मक रूप आज के दिन है और जो मोबाइल को अगर जे आप कोई न कोई सही तरीके क्यों चीज नई चीज सीखने के लिए काम में लिया तो भाई गूगल और यूट्यूब है ने जो को के आपने किसान बहन भाइयों के लिए बहुत ज्यादा और संचार कोई माध्यम ही है और वो क्या कह दूर दराज खेतों के मायने बैठा भी भाई अब किसान बहन भाई है जो को क्या कह गांव 3 कोस दूर है जो को भी वो खेत है और बैठे बैठे रहे बैठे यूट्यूब के ऊपर है या फिर कोई जिका प्रगतिशील किसान है आंको जठे व्याख्यान हो कार्यक्रम हो बढ़तो कौन दास का लेकिन कई किसान बहन भाई इंज का के ग्रुप का माइन जुड़ेड़ा हुए तो बे लाइव आवे से समझ को चल है बिंग माइन लाइव आवे तो बठे जका दिया अपना आसे पासे की बात करा कृषि विज्ञान केंद्र सरदार सर है बढ़तो कौन जा पाया लेकिन बठे जका किसान बहन भाई इंज का गया बंक को जो को लाइव है सेशन है बीव जुड़ की और समझ सके के है जो को आपने क्या क्या काम करना है और बिंग सगे सगे आपने जिका कृषि महकमे का जिका वैज्ञानिक ने वे भी के यूट्यूब के ऊपर आपका जिका वीडियो ही ने

0: जिका अलग अलग चीजा संबंधित है और वे भी डले रखे वो भी क्या है संचार तंत्र कोई और संचार क्रांति कोई जो को माध्यम है वो एर भी हूं। देखो आपने किसान मैन भाया ने है जो को भाई सरदार सर जानू जो को काम हो है वो देखो क्या गांव तीन कोस दूर खेत के मैं बैठो और वो किसान मैन भाई है जो को फायदो ले सके तो संचार कोई तो है
1: भाई। अरविंद भाई अभी थे स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो आपनी जकी जन कल्याणकारी सरकार ही बे देखो एक मान लो किसाना के लिए एकदम मान लो भी पर सटीक और सही जानकारी भाई कई बार के होगा आप मान लो यूट्यूब पर तो कोई मान लो आजकल की है इशू विशो भी मान लो अपन कोई बिना मान लो विशेषज्ञ वो वीडियो अगर मिल जा तो वो अपन के नुकसान भी पहुंचा दे तो अपन यूट्यूब पर तो जब भी देखा ना तो अपन जी थे अभी बता रहे कि भाई अपना जगह कृषि विज्ञान केंद्र का वैज्ञानिक ही और ही बांका ही अपना देखा बाकी सरकार देखो अपनी भारत सरकार है बा एक एम किसान ऐप और जारी करी है तो बा किसान मान लो किसाना के लिए भी कमाने फसलों की जानकारी मिट्टी की सटीक जानकारी मौसम की जानकारी और एक्सपर्ट जगह कृषि सलाह जगह देने वाला जगह सरकारी जगह विशेषज्ञ बहुत बेस मान लो भी पर संबंधित जानकारी दी बाजार भाव की मिट्टी के स्वास्थ्य की मशीना की जितनी भी मान लो खेती बाड़ी में संबंधित जानकारी बे बिल्कुल अथोराइज जानकारी मिलेगी आपने जगी की एक एम किसान ऐप है आप डाउनलोड कर सका अपनी सरकारी ऐप है भी कह सके अपनी सरकारी एक ई नाम ऐप हो तो वो इनाम पोर्टल है बिक महीना किसान है बा आपको जो को फसल बिक्री है वो आसानी कर सके है तो अभी आपने की है के एक मान लो अथोराइज है बिक सके किसान रथ ऐप है तो वह है तो आज की सरकार जो की संचालित कर रहा की ही पे ऐप भी आप स्मार्टफोन के माइन डाउनलोड कर लिया और बिक बाद में आप की है के खेती बाड़ी संबंधित जिकी भी जानकारी ही वे आप ले हाँ बदलावन तो अरविंद भाई आपनी जारी है और एक लोक रचना आप अपना जगह हितुला किसान बहन भाई मन और सुना दिया तो सुनो साहब मोहन राम चौधरी साथ आवाज में वो लोक रचना

0: तो अभी अपन सांतरी सी लोक रचना है बा सुनी और मोहन नाम साथी की आवाज कमाई ने और अरविंद भाई की है के अब आपनों भी रोटी टुकड़े को बगत है वो हो गयो तो और मिलने तानी अपना जगह तुला किसान बहन भाई ही बहु अपन ने भी अब सीख लेनी पड़ सी और चलता चलता अपन अब भी कह दिया कि भाई देखो मौसम है ना दो तीन दिन की है कि मौसम में बदलाव रह सी तो अपन आपनों जो को खेती बाड़ी को काम दाम है कोई अपने पशुधन को जो को बाकी मान लो खेचर अपन जो की करनी है भी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है
1: भाई ये बदलते मौसम का मैंने सावधानी जी की बरतेड़ी हो ने की ओड को नहीं हो बार देखो के अबार आप बतलावन खूब सारी और करता लेकिन घड़ी है जो आप बोली ज्यादा बतलावन करने की इजाजत कौन दे तो जो मिलन तानी भाई अरविंद ने
0: और भाई देवन

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र चूरू से किया गया। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी एट 90 पर विशेष भेंट वार्ता सुरेंद्र डी सोनी से आरती सोनी की बातचीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है आकाशवाणी के गौरवपूर्ण 90 वर्षों को। श्रोताओं, रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये देश की संस्कृति, संगीत, साहित्य और जन भावनाओं का जीवंत दस्तावेज भी रहा है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष। 90 वर्षों की ये यात्रा केवल प्रसारण की यात्रा नहीं है श्रोताओं, बल्कि भारत की स्मृतियों, संवेदनाओं, संगीत, साहित्य और जन भावनाओं की जीवंत कहानी है। आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार, साहित्यकार, कवि और प्रोफेसर श्री सुरेंद्र डी सोनी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी।
0: प्रश्न आपसे विषय पर पूछना चाहूं, इससे पहले एक संवेदना वाला प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आकाशवाणी नाम अपने आप में बहुत सुंदर और भावपूर्ण है, इसके पीछे क्या इतिहास है?
1: ये जो शब्द है ना आकाशवाणी, अब यदि हम निकट अतीत की बात करें तो पिछले 90 साल तो आप बता ही रही हैं।
0: बिल्कुल।
1: जो इसकी लोकप्रियता हुई है 1947 के बाद में, खास तौर से तब से लोग इसको रेडियो के पर्याय के रूप में देखते आए
0: जी।
1: लेकिन हम पीछे जाएं तो आप भारत के महाकाव्यों को ले लीजिए, और चीजें यदि अपन छोड़ भी दें, रामायण और महाभारत
0: जी,
1: तो इनमें आपको ये सुनने को मिलेगा कि आकाशवाणी हुई
0: किसी न किसी प्रसंग में।
1: जैसे ये आकाशवाणी हुई कि कंस को देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, उसका वध करेगा, तो ये कौतूहल पैदा करने वाला शब्द है। कुछ न कुछ इसमें रहस्य होता है, रोमांच से भरा हुआ शब्द है कि आकाश से भी कोई वाणी हो सकती है क्या।

0: लिखे लोगों के लिए इसका वो अर्थ होता है जो आमतौर पर साहित्य से समझते हैं लोग
1: जी।
0: लेकिन जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए ये शब्द बड़ा ही रोमांच पैदा करने वाला शब्द है कि कोई है बताने वाला, कोई है कहने वाला जो हमें दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता वो ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। ये शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है।
1: श्रोताओं, आपने जाना आकाशवाणी शब्द की महत्ता क्या है। अगला प्रश्न मैं करना चाहूंगी आपसे, चूंकि आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, तो मैं इतिहास की ओर झांकना चाहूंगी कि स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही।
0: हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, आपने शब्द काम में लिया है राष्ट्र निर्माण।
1: जी,
0: जब हम राष्ट्र की बात करते हैं ना, तो वो देश से बड़ा शब्द है।
1: बिल्कुल,
0: देश तो एक भूगोल में बंध जाता है
1: जी,
0: लेकिन राष्ट्र है वो उससे बाहर है। आप इसको यूं समझें, मान लीजिए आप ही हैं, आप चले गई अमेरिका
1: जी,
0: आप वहां की नागरिक हो गई। अब आपकी पूरी निष्ठा तो अमेरिका के प्रति होनी चाहिए, लेकिन आपको जब ये पता चलेगा कि भारत में दिवाली मनाई जा रही है, तो आप भी अपने घर में वहां दिए जलाएंगी।
1: बिल्कुल,
0: आपको ये पता चलेगा कि भारत में रक्षाबंधन है, तो आप अपने भाई से वीडियो कॉल करेंगी और वहीं राखी बांधेंगी उसी पे। तो हम देश की सीमा से तो बाहर हो गए, उसके बाद भी देश हमसे छूटा नहीं,
1: भावनाओं में बंधा हुआ।
0: हाँ, असल में हमारा राष्ट्रीय होना यही है। तो आकाशवाणी जो है, जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम ही तो आकाशवाणी है ना, ये देश की सीमाओं से पार करके और बहुत दूर दूर तक लोकप्रिय रहा है अब तक। तो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को जोड़ने में तो जितनी भूमिका आकाशवाणी की है, उतनी भूमिका किसी दूसरे माध्यम की रही नहीं स्वाधीनता के बाद। दूसरी बात ये, आप देखेंगी यदि हम थोड़ा सा क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास देखें,
1: बिल्कुल,
0: तो आप ये महसूस करेंगी कि क्रांतिकारियों ने अपने अपने रेडियो स्टेशन बना रखे थे।
1: बिल्कुल,
0: आप ये भी देखेंगी कि जब सुभाष देश के बाहर थे तो गांधी जी को उन्होंने क्या संबोधन दिया था, राष्ट्रपिता कहा था
1: जी।
0: तो इसलिए आकाशवाणी राष्ट्र के निर्माण का बड़ा ही सुंदर माध्यम है, जो सीमाओं से पार जाकर और देश के लोगों के दिलों को जोड़ता है।
1: अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रेडियो को अक्सर हम जनता का माध्यम कहते हैं, ऐसा क्यों, क्या वजह है कि रेडियो जनता का माध्यम है?
0: इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि रेडियो जनता तक बड़ी आसानी से पहुंचा है। दूरदर्शन जब आया तो उस समय तो ये था कि जो लोग सामने बैठेंगे वही देखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज तो स्थिति थोड़ी अलग है, इसके बहुत सारे दोष हैं, वो बात अपन अलग करेंगे, सोशल मीडिया से क्या नुकसान हो रहा है या क्या जो हो रहा है वो दूसरी बात है। लेकिन जब ये रेडियो आया था उस समय प्रारंभ में तो ये कम लोगों के पास हुआ करता था, लेकिन मुझे मेरा बचपन याद है, पान की दुकानों पर या जो थड़ियां होती है इन पर रेडियो होता था और समाचार के समय लोग एकत्र हो जाते थे
1: जी।
0: मैंने खुद ने क्रिकेट की कमेंट्री इन थड़ियों पे बैठ के सुनी हुई है। तो ये जनता तक इसीलिए पहुंचा कि आवाज तो एक यंत्र से निकल रही है, लेकिन वो जोड़ बहुत सारे दिलों को रही है। सारे लोग एक साथ एक ही तरीके से सोचते हैं उस समय, कोई गीत आता है तो सभी भावुक हो जाते हैं, समाचार आते हैं तो सभी एक जैसा चिंतन करने लगते हैं, एक जैसा सोचने लगते हैं। तो ये जनता का माध्यम है।
1: कोई ऐसे कार्यक्रम, आप चूंकि कह रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से रेडियो सुनते आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्हें आप तो याद रखे ही रखे हैं, लेकिन लोग भी जिन्हें याद रखते हैं?
0: देखो, रेडियो पे दो चीजें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई अपने समय में, एक तो समाचार
1: जी,
0: और जब आप जनता के माध्यम की बात करती हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, इस देश में हर 10 साल से एक पीढ़ी बदलती है, तो 10 साल में बदलती हुई कई पीढ़ियों ने रेडियो से, आकाशवाणी से और शब्दों का सही उच्चारण करना सीखा है, उनके अर्थ जानने की कोशिश की है। तो एक बात तो हो गई ये कि भाई ये जो रेडियो है, ये चूंकि जनता का माध्यम है और लोगों तक पहुंचता है, तो इतना सीखा है लोगों ने रेडियो से, हमारी पीढ़ी के लोग जो थे उन्होंने और उसके बाद में, कि रेडियो

0: अच्छा ही लगा है लोगों को।
1: और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आज भी हमारे सदन में हैं।
0: प्रोग्राम्स तो पहला कार्यक्रम तो हो गया समाचार
1: जी।
0: अच्छा हिंदी नहीं, इसमें आप आंग्ल भाषा को भी शामिल करें, जोड़ें,
1: बिल्कुल,
0: तो भी आपको अंग्रेजी सीखने का एक लोकप्रिय माध्यम था रेडियो। हमने खुद ने अंग्रेजी भाषा रेडियो के माध्यम से ज्यादा सीखी है
1: जी।
0: और उसके बाद में पढ़ा है। दूसरा है फिल्मी गाने,
1: बिल्कुल,
0: भारतीय फिल्मों के गीतों के लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण है ना, तो वो रेडियो है। अपने जमाने में आप ये देख लीजिए कि विविध भारती ले लीजिए,
1: बिल्कुल,
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम है तो सैनिक जुड़ा हुआ है,
1: बिल्कुल,
0: युवाओं के लिए कार्यक्रम है तो युवा जुड़े हुए हैं, युववाणी कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है। गीतों की बात है कि कौन सा गीत इस सप्ताह टॉप पर है, किसान है वो शाम को थका हुआ अपने घर में बैठा है, वो कृषि दर्शन कार्यक्रम सुन रहा है, उसको नई नई जानकारी मिल रही है, तो ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं समाज में या ज्ञान का या विज्ञान का जहां रेडियो न पहुंचा हो और जिस पर रेडियो के कार्यक्रम न हुए हो। लेकिन ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रमों में समाचार को मैं प्रथम स्थान पर रखूंगा, उसके बाद हमारी भारतीय फिल्मों के गीत, और उसके बाद युवाओं के लिए युववाणी कार्यक्रम एक दोपहर में आता था, अब भी आता होगा, महिला जगत कार्यक्रम है, वो भी बहुत लोकप्रिय रहा, और इसके अलावा किसानों के लिए कृषि दर्शन या किसी दूसरे नाम से जो कार्यक्रम है वो। इसके अलावा कुछ लोग विशेष रुचि के होते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत वाले लोग हैं
1: जी।
0: तो देर रात शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम तय है आकाशवाणी का, उसको सुनने वाले भी बहुत लोग हैं। और एक दूसरा कारण भी है अलग अलग कार्यक्रमों के लोकप्रिय होने का कि लोगों को अवसर मिलता है। गांव के किसान को जब आप कृषि दर्शन में बुला के बात करेंगे तो वो सोचेगा कि देखो मेरी आवाज कितनी कितनी दूर तक जा रही है। युवा, मैं खुद ही 14 साल का चला गया था युववाणी कार्यक्रम में आकाशवाणी जयपुर पर, तो मुझे ये लगा कि बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने और हमेशा के लिए जुड़ गया। तो ऐसे कोई एक बार भी आकाशवाणी से किसी कार्यक्रम से जुड़ गया है तो फिर वो आजीवन जुड़ा रहा है उससे, और उसने दूसरों तक भी उस कार्यक्रम को पहुंचाया है। तो ये 4-5 कार्यक्रम है वो बड़े लोकप्रिय रहे।
1: आपने अभी बताया कि हिंदी फिल्मों को भी चरम पर लाने का और उनको सफलता के नए सोपान देने का काम रेडियो ने किया है
0: जी।
1: इस प्रोग्राम से पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपके शौक और आपकी रुचियों को हमने जाना और हमें पता चला कि आप भी हिंदी सिनेमा की बहुत महान अदाकारा मीना कुमारी के जबरदस्त प्रशंसक रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मीना कुमारी जी की फिल्मों का कोई एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है।
0: मीना कुमारी जी के बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी फिल्में हैं। वो साई बीबी और गुलाम फिल्म के गाने देख लीजिए, है ना। दूसरी जो अदाकार है दही हैं, उनके भी बहुत सारे गाने हैं। और इसके अलावा मैं जोड़ दूं, हालांकि ये थोड़ा प्रसंग से हटकर होगी बात, ये जो बड़े बड़े कवि और शायर हैं इनके बहुत सारे कार्यक्रम रेडियो पर आते रहे हैं, कवि सम्मेलन खूब हुए हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनसे सुन सुन के भी हमने सीखा
1: जी।
0: मीना कुमारी ने प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे नहीं पता, हालांकि उनके एक दो कार्यक्रम मैंने सुने हैं सैनिकों से संबंधित, शाम को गीत वाला कार्यक्रम उनका उनका भी आया हुआ है, मीना कुमारी जी का भी, उनकी आवाज मैंने सुनी है, दर्द भरी आवाज, बहुत अच्छी आवाज। लेकिन उनके बहुत सारे शेर मुझे आकाशवाणी से याद हुए पढ़ के, है ना, इस जुल्फ की कालिक में गुल जाए अगर कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता,
1: बिल्कुल, क्या
0: इस तरह के शेर मीना कुमारी के, वो यही हमने सुने। तो मीना कुमारी नहीं, बहुत सारे जो कलाकार हैं उनके गीत हमें याद रहे हैं। मुबारक बेगम का एक गीत है, वो इस समय तो मुझे उसके बोल याद नहीं आ रहे हैं, वो हमारी याद आएगी
1: कभी
0: तन्हाइयों में, यूं हमारी याद आएगी, कितना छोटा सा गीत है वो
1: जी।
0: आज भी लोग सुनते हैं, कितना लोकप्रिय है। तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गीत हैं, जो बीच का एक दौर ऐसा आया था जब हमारे पास कोई दूसरा साधन ही नहीं था सुनने का, ये जो कैसेट्स और ये रिकॉर्डिंग्स तो बाद में आई हैं, उसके पहले कम लोगों के पास ही रहा करते थे वो गोल घूमने वाले रिकॉर्ड्स,
1: ग्रामोफोन।
0: तो उस समय यही था कि भाई रात को 10:30 बजे वाला गाना, उस पे जो उर्दू सर्विस पे गाने आते थे, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पे सुबह सुबह भी गाने आते थे, तो उस समय सुन ले, उस समय ऐसे सुकून भरे गीत आएंगे ऐसा लगता था। तो उस समय फिर ये सोचते थे यार आज तो कोई मीना कुमारी का गीत सुन ले तो अच्छा रहे, या आज तो कोई मधुबाला वाला गीत आ जाए, मोहे पनघट पे इस तरह का कोई गीत आ जाए, वो रहे।

0: करता ही था, है ना। और भी कलाकार हैं जैसे दिलीप कुमार का भी, राज कपूर और मुकेश की जोड़ी
1: जी,
0: तो वो, और मुझे याद है जब राज कपूर का निधन हुआ था तो रेडियो पर सारी रात गाने चले थे मुकेश के और राज कपूर के। तो बहुत सारे अवसरों से व्यक्ति है वो सीधा सीधा रेडियो से जुड़ा हुआ था। इंदिरा जी का की जब हत्या हुई थी उस समय वो समाचार रेडियो पे सुना था सबसे पहले। और आप ये देखो कि लोगों ने उसकी पुष्टि भी रेडियो से ही की थी,
1: विश्वसनीयता मानी जाती है।
0: तो रेडियो की अपनी विश्वसनीयता है और इसके कारण रेडियो ज्यादा लोकप्रिय है, अखबार से कम लोकप्रिय नहीं है रेडियो, और रेडियो में भी फिर आकाशवाणी।
1: अपनी पसंद का कोई गीत आप बताएं, हम भी श्रोताओं के साथ वो गीत सुनना चाहेंगे।
0: नहीं, मुझे तो वही सुना दीजिए, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, ताकि बहुत सारे जो नए बच्चे हैं वो भी जान जाएं कि ऐसे भी कभी कोई गीत हुआ करते थे।
1: तो श्रोताओं सुनते हैं प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी की पसंद का ये गीत।

0: ये गीत अभी हमने सुना और हम बात कर रहे थे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों की।
1: जी
0: आपसे पूछना चाहूंगी कि विश्वसनीयता की जहां तक बात आती है, रेडियो को सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है सूचनाओं का, इसके बाद ऐसी कौन सी सबसे बड़ी ताकत है जो आकाशवाणी की ताकत है, जो केवल आकाशवाणी के पास ही निहित है विश्वसनीयता के अलावा?
1: आप चीजों को दो भागों में बांट के देखिए, एक तो रेडियो और एक आकाशवाणी।
0: बिल्कुल,
1: रेडियो में बहुत कुछ आ जाता है और अब का जो दौर है, हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, FM भी बहुत हो गए, इतने सारे लोग उस पर प्रोग्राम देने वाले हो गए, उनको एक बार अलग करते हैं। और आकाशवाणी की बात करें तो सबसे सही समाचार हमें आकाशवाणी पर मिलेगा, सबसे ज्यादा विश्वसनीयता, सबसे ज्यादा सच्चाई इसीलिए निकल कर आती है आकाशवाणी से, क्योंकि इसके पास जो भी समाचार आएंगे, जो भी खबरें आएंगी, वे पुष्ट होकर आएंगी। हालांकि खेल तो सारा हवा का ही है आकाशवाणी का, जो भी खेल है, लेकिन हवा में ऐसी बात नहीं होती जो झूठी हो।
0: सर आप इतिहासकार भी हैं और कवि भी, क्या आपको लगता है कि रेडियो ने इतिहास और कविता दोनों को जन जन तक पहुंचाया है?
1: इतिहास के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतिहास की प्रारंभिक जानकारी हमें रेडियो से मिली है, मतलब आकाशवाणी से मिली है। मुझे याद है ये जो श्रव्य नाटक होते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उनको, रेडियो नाटक बोला करते हैं जिनको, ये रेडियो नाटक बड़े बड़े क्रांतिकारियों पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत मंचित हुए हैं इस रेडियो पर, आवाज के माध्यम से। तो तभी पता चलता था, वो हम बहुत छोटे थे, कि ये भी कोई व्यक्तित्व है क्या। आज तो आपके पास बहुत विकल्प हैं, आप टीवी पे भी चैनल बहुत जल्दी बदलते हैं, लेकिन उस जमाने में इतने सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे कि आप एक को छोड़कर दूसरे पे चले गए, ऐसा कम होता था। आप एक जगह रुके हैं तो रुके

0: हुए ही हैं और वहां पर आपको नहीं पता कि अगला कार्यक्रम क्या आने वाला है, लेकिन उसी समय कोई इस तरह का रेडियो नाटक आ गया जो भगत सिंह पे हो या अशफाक उल्ला खान पे हो या नेताजी सुभाष पे हो या चाणक्य पे हो या चंद्रगुप्त पे हो या शिवाजी महाराज पे हो, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती थी और फिर अपने आप रुचि पैदा होती थी कि इनके बारे में जाने। वो दौर पुस्तकालयों का दौर भी था। अब मेरी जहां तक बात है तो मेरा निर्माण जो है वो खेल के मैदान में कम हुआ, पुस्तकालयों में हुआ या इस रेडियो से हुआ। प्रारंभ में 60 साल की आयु है मेरी, तो उस समय जब वो जो दौर था मेरे किशोर होने का, उस दौर में उस कालखंड में और बहुत बड़ा योगदान रहा रेडियो का। मैंने बहुत सारे जो ऐतिहासिक प्रसंग हैं, ऐतिहासिक विषय हैं, वो रेडियो से ही जाने हैं और उसके बाद रुचि बनी तो धीरे धीरे फिर मैं इतिहास पढ़ने की ओर मुड़ गया। जहाँ तक कविता की बात है तो कविता मूल रूप से तो देखो ये सीधा सीधा आपकी आत्मा का विषय है।
1: बिल्कुल,
0: आपके भीतर कविता होती है तभी वो बाहर आती है, लेकिन उसको परिष्कृत करने के लिए, उसके परिष्कार के लिए और कविता को वास्तव में कविता बनाने के लिए आपको कोई किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। कोई गुरु चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए और उस गुरु और मार्गदर्शक के रूप में मैंने आकाशवाणी को भी पाया है, आपके अपने रेडियो को भी पाया है।
1: श्रोताओं, जानना आपने कि किस प्रकार आकाशवाणी ने इतिहास और कविता दोनों को जन जन तक पहुंचाया है और बड़ा शक्ति के साथ पहुंचाया है। कविताओं को सुनकर मन आह्लादित होता है, मन प्रसन्न होता है और ये बात हम तक पहुंचाती है आकाशवाणी। सर, एक प्रश्न आपसे और जानना चाहूंगी कि आज डिजिटल युग है, हम बहुत सारी तकनीक को अपना चुके हैं और कई चमत्कार हमारे सामने होते रहते हैं, लेकिन ऐसे में भी रेडियो प्रासंगिक है अथवा नहीं?
0: आकाशवाणी की और साथ में रेडियो की भी ये सबसे अच्छी बात है कि इसने समय के साथ अपने आप को रूपांतरित किया
1: जी।
0: इसीलिए आज हम बहुत सारे एफएम सुनते हैं, एफएम चैनल सुनते हैं, इंटरनेट रेडियो आ गया, डिजिटल रिकॉर्डिंग होने लग गई, मोबाइल पर ऐसे एप्लीकेशंस हैं कि आप कहीं का भी एफएम सुन लें, ये सारा। तो एक तो अपना विस्तार आकाशवाणी ने रोका नहीं, जैसे जैसे नई चीजें आई वैसे वैसे इसने अपना विस्तार किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। दूसरी बात यह है कि जो कार्यक्रमों का जो स्वरूप है उसमें आकाशवाणी ने आत्मा तो नहीं बदली, लेकिन जो आवरण है बाहर का, जहां जहां बदलने की आवश्यकता थी वहां वहां आकाशवाणी ने अपने आप को बदला है और अपने मूल स्वरूप को, अपनी विश्वसनीयता को कायम रखा है। इस वजह से, और मैं ये कह सकता हूं कि आज के दौर में भी आकाशवाणी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे माध्यम है।
1: सर, एक बात जो हम सुनते आ रहे हैं युगों से और खास तौर पर कवि समुदाय के लिए होती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कल्पनाओं का जो लोक है उसमें विचरण करते करते कवि कहां पहुंच जाता है, इसका अंदेशा नहीं होता, इसका अनुमान नहीं लगा सकते और इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आकाशवाणी भी कल्पनाओं को जीवित रखता है। क्या हम आकाशवाणी के माध्यम से सुनने वाले कार्यक्रमों को जब सुनते हैं तो क्या हम कल्पना लोक में विचरण कर रहे होते हैं?
0: देखो, आकाशवाणी की विश्वसनीयता तो इसी कारण से है कि यह सच बताता है, यहां से कभी कोई मिथ्या प्रसारण नहीं होता, कोई मिथ्या सूचनाएं नहीं जाती। तो एक तो उसका ये पक्ष है।
1: बिल्कुल,
0: कि जब आपको सूचना चाहिए तो आपको सही सूचना मिलेगी, उसमें कोई कल्पना नहीं होगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, जहां जहां कला को अभिव्यक्त करने की बात आती है, खाली कविता की बात नहीं है, जैसे रेडियो नाटक है अपने
1: जी।
0: या जैसे मान लो एक कार्यक्रम आता है, किसानों का कार्यक्रम है, चाहे उसका कोई सा भी नाम हो, वो कार्यक्रम हिंदी भाषा में हो जरूरी नहीं है,
1: स्थानीय,
0: वो स्थानीय भाषा में कार्यक्रम होता है। और स्थानीय भाषा में भी ये है कि आप चूरू का चैनल देखेंगे, चूरू एफएम पे जाएंगे तो आपको दूसरी भाषा मिलेगी, और आप जयपुर जाएंगे तो वहां के किसानों के कार्यक्रम में वो ढूंढाड़ी का पुट आ जाएगा।

0: बिल्कुल
1: तो एक तो इस वजह से क्या है कि अब अपनी भाषा में जब बात होगी तो व्यक्ति उसको जुड़कर सुनेगा। और वो बात यदि मान लीजिए कि कोई नाटक है, मान लीजिए अपनी भाषा में आ रहा है, तो नाटक के साथ तो जो पात्र होंगे उनके साथ श्रोता बहेगा ही, जो अपना दृश्य माध्यम होता है उसमें साथ बहते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: श्रव्य माध्यम में हमारी सारी चेतना संकेंद्रित हो जाती है, जो आवाज उस यंत्र से आ रही है, उपकरण से आ रही है, रेडियो से आ रही है, उस आवाज में तो कल्पना के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई विज्ञान वार्ता है उसमें तो कल्पना चलेगी नहीं,
0: नहीं तथ्य होंगे।
1: लेकिन जहां कल्पना का प्रश्न होता है, जहां कविता हो गई, जहां नाटक हो गया, जहां साहित्य हो गया, जहां कहीं भी ये गुंजाइश होती है, जैसे बच्चों के कार्यक्रम है,
0: बिल्कुल
1: अब बच्चों के बच्चों को तो कहानी सुनानी पड़ेगी, तो
0: उसी
1: जब
0: अंदाज
1: बच्चों को
0: में।
1: आप कहानी सुना रहे हैं तो बच्चा उस कहानी के साथ बहता चला जाता है। तो कल्पना से तो अलग हमारा जीवन है ही नहीं, तो जब हमारा जीवन ही कल्पना से अलग नहीं है तो आकाशवाणी कैसे होगा, क्योंकि आकाशवाणी बात तो हमारी जिंदगी की करता है।
0: कल्पनाओं की बात की, गीत संगीत की बात की, फिल्मों की बात की। इस वक्त इस कार्यक्रम का रुख हम एक बार फिर से गीत संगीत की ओर मोड़ना चाहेंगे। और आपकी पसंद का कोई गीत?
1: हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले बहुत सुंदर गीत है।
0: तो आपकी पसंद पर ये गीत तमाम श्रोताओं के लिए।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्रृंखला आकाशवाणी के 90 वर्ष, और आज इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी। हमने बातें की हैं आकाशवाणी के लिए भी की बातें, हमने इतिहास को भी जाना, हमने साहित्य को भी समृद्ध करने की भूमिका आकाशवाणी की क्या रही है इस बारे में भी बात की। अब हम जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी की ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।
1: हाँ, कोई नया विद्यार्थी हो जो अभी अभी कॉलेज में गया हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया हो, तो उसके पहले तो वो बहुत ज्यादा नहीं जानता कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, मेरी आवाज कैसी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो अनुभव करता है कि मेरी अभिव्यक्ति ऐसी हो जो दूसरों से अलग हो, दूसरों से अच्छी हो, और तब उसे ये आकाशवाणी याद आता है। मेरा खुद का ही अनुभव ये है कि आप अच्छा बोलने का प्रयास यदि आपको करना है, आपको सीखना है अच्छा बोलना, तो आप आकाशवाणी से सीख सकते हैं। तो हमारी जो भाषिक गरिमा है वो हमें आकाशवाणी से प्राप्त होती है। मैं नहीं कह सकता कि सभी जगह ऐसा हो गया, क्योंकि इतने सारे FM चैनल्स हो गए, कहीं कहीं मुझे ये जो जो बोलने वाले जिनको क्या

0: बोलते हैं क्या
1: जी,
0: इन
1: जी।
0: रेडियो जोकी की कई जगह मुझे भाषा पसंद नहीं आती है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन मैं अपने दौर की बात करूं या मैं आकाशवाणी की ही बात करूं
1: जी।
0: तो मैं ये कहता हूं कि भाषा की गरिमा, भाषा की शुद्धता और जो उतार चढ़ाव आता है बोलने में, वो सारा हम आकाशवाणी से सीख सकते हैं। तो ये आज के जमाने में भी सबसे बड़ी बात है। बच्चे मुझसे कई बार सवाल करते हैं कि सर हम अच्छा कैसे बोलें, शुद्ध कैसे बोलें, साफ कैसे बोलें। तो मैं उन्हें ये कहता हूं आकाशवाणी पे समाचार तो जरूर सुना करो, आप ये भी जान जाओगे कि कहां नुक्ता काम लेना है और कहां नुक्ता काम नहीं लेना है। बहुत सारे समाचार वाचक थे वो मुझे अब भी याद है, बहुत कई नाम अब भी याद
1: है। हाँ,
0: तो हम भाषीय गरिमा है, हमारा जो भाषा का जो ज्ञान है वो आकाशवाणी से बढ़ता है और हम सीखते हैं, निरंतर नया सीखते हैं।
1: सर चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे युवा रेडियो उद्घोषक हैं और साहित्य प्रेमी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं मेरे उद्घोषक मित्रों को, भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहूंगा कि ठीक है उनकी आवाज अच्छी है, मेरी सहमति है, उनका उच्चारण भी अच्छा है, ये भी ठीक है, लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है इस विषय में उनको और ज्यादा जागरूक होना चाहिए
1: जी।
0: जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, देश में क्या हो रहा है, अपने शहर में क्या हो रहा है, आप विषयों को गहराई से नहीं समझेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति में मौलिकता नहीं आएगी। दूसरी बात कविता की, साहित्य की रही, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष इस श्रृंखला में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी को। सर आपने अपने विचारों से आकाशवाणी की गौरवपूर्ण यात्रा को बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा। आपने इतिहास, साहित्य और संवेदनाओं के सुंदर संगम से इस बातचीत को अत्यंत यादगार बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, आकाशवाणी के 90 वर्षों को समर्पित यह विशेष प्रस्तुति यही समाप्त होती है। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी एट 90 पर विशेष भेंट वार्ता, सुरेंद्र डी सोनी से आरती सोनी की बातचीत। इस कार्यक्रम का निर्देशन किया अमित कुमार सैनी ने और प्रस्तुति थी विनोद कुमार हल्किया की। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए पत्थर के सनम फिल्म का इस गीत के साथ, मजरू सुल्तानपुरी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, किशोर कुमार की आवाज, अमानुष फिल्म से इंदिवर का गीत, श्यामल मित्रा का संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम केशव देवतमार के साथ।

अमानस फिल्म के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यह समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज 8:09।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था।

0: धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि AI तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए AI युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का

0: जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: Girija Amma ji, karib 15 school chalati hain. Unhone Mann Ki Baat

सीमा मिश्रा और साथियों की गई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: छोड़ दो, देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। थान पर बैठकर तमाशा देख

0: नहीं कर सकती, हमने अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती थे।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
3: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा दिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल, ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
3: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
2: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठ कर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार

0: के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

0: सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.7 MHz पर।

एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम।

0: आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटि आस्थाना विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुचरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुचारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
0: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नो जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by श्री असनापुर एर्रैया in the रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया next presents सामगान प्रियकरम, a composition of गुरु सुरजानंद in राग कीरवाणी set to मिश्र चापू ताल।

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। दोनों पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: You have been listening to the saxophone recital by Sri Asanapurappu Yerraya and party in the Ravivasari Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandran.

0: This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 MHz पर. रात के 11 बजने वाले हैं. अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Man Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal

0: Challengers Bengaluru, RCB at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम समाप्त होते हैं। कल पहली सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।